मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026 सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है।

0: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, समाचारों के लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष

0: अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। विचार मंथन। सिसरो का कथन है, ज्ञानी विवेक से सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभव से और मूर्ख आवश्यकता से।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।

ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अपने भीतर है। यदि हम अपने मन में स्वयं की खोज कर लें, तो इससे बड़ी ईश्वर की भक्ति और कुछ नहीं।

राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए। मधुप मुद्गल की आवाज में कबीरदास जी का ये निर्गुणी भजन।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब सुनिए चिंतन आलेख प्रोफेसर आशा श्रीवास्तव का, स्वर दिनेश नामदेव का।
1: संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। सुख मनुष्य की सर्वोत्तम आकांक्षा है। सुखी जीवन जीने के तमाम साधन जुटाने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है, किंतु वो ये भूल जाता है कि एक सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे सुख को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि एक के साथ ही दूसरे का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। आज के समय का पहला सुख है स्वस्थ शरीर। हम देखते हैं कि पहले सुख अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य की अवहेलना करके युवा वर्ग दिन रात पैसा कमाने की होड़ में लगा है। स्वास्थ्य को तिलांजलि देकर व्यक्ति किस प्रकार सुखी हो सकता है? इस पर भी यदि व्यक्ति नशे का गुलाम हो जाए, फिर तो आप ये समझिए कि स्वास्थ्य पूरी तरह चौपट और ढेर सारी बीमारियां ऊपर से बिना बुलाए मेहमान की तरह आ धमकती हैं। कहां तो धन कमाने की उत्कट लालसा लेकर घर से निकले थे कि कुछ भी हो पर लखपति तो जरूर ही बनेंगे, पर हो गया उल्टा। एक सुख के चक्कर में सबसे बड़ा सुख निरोगी शरीर गंवा दिया। अब लगाइए डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर और परिवार की खून पसीने की कमाई इन्हीं की भेंट चढ़ा दीजिए। साथ ही शरीर ऐसा हो जाता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। फिर भी यदि कुछ हिम्मत जुटाएं तो जेब खाली। जीवन तो परिवार ने धन समय और परिश्रम से बचा लिया, पर अब आगे का जीवन कैसे चलेगा? स्वस्थ शरीर से जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करके स्वयं इतना धन अर्जित कर लेते हैं कि अपना और अपने परिवार का जीवन सुखमय बना सकें। तो देखा आपने कि एक सुख के साथ दूसरे सुख का अस्तित्व है। आजकल स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। स्वास्थ्य का महत्व कम हो गया है। समय असमय सोना जागना, विपरीत भोजन करना और पूरे दिन टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल और रही सही कसर लैपटॉप ने पूरी कर दी है। तकनीक हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, परंतु जब तकनीक हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगे तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि अब तकनीक हमारे स्वास्थ्य को चौपट कर रही है। कंप्यूटर के कारण आज छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लगने लगा है। साथ ही कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग से उनको ढेर सारी बीमारियां भी घेर रही हैं। अनिद्रा, मोटापा, उग्रता और क्रोध इत्यादि उनके जीवन में स्थायी हो गए हैं। परिवार, समाज से ऐसे व्यक्ति और बच्चे कट जाते हैं। उनका वास्तविक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी अपनी एक काल्पनिक दुनिया बन जाती है जो वास्तविक जीवन के सामंजस्य में बाधक बनती है। स्वस्थ व्यक्ति ही परिवार और समाज के लिए उपयोगी होता है। किसी भी समाज की शक्ति उसका युवा वर्ग होता है। स्वस्थ कर्मठ युवा ही देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। योग, ध्यान, प्राणायाम और कसरत ऐसे साधन हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं और व्यस्त दिनचर्या के तनाव से बचाते हैं। ये हमारा पहले सुख की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम है। फिर कठिन परिश्रम के बल पर जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं और साथ

0: सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख प्रोफेसर आशा श्रीवास्तव का और स्वर दिनेश नामदेव का था। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर ए हरिहरन का है।

वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशलक्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें, किंतु मुझे आपसे यह पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन स्वर ए हरि हरन का था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। कृषि सामिकी में किसान भाई अब सुने धान की सीधी बुआई तकनीक संबंधी जानकारी।
1: किसान भाई बहनों, हमारी खेती में बीज का बहुत अधिक महत्व है। बीजों का उपचार अवश्य करें। प्रमाणित साफ और स्वस्थ बीजों को भी फफूंद रोगों और दीमक से सुरक्षित रखने के लिए फफूंदनाशक और कीटनाशक दवा से बीजोपचार करना जरूरी होता है। कुछ बहुत ही भयंकर बीमारियां ऐसी हैं जो केवल बीजोपचार के द्वारा ही रोकी जा सकती है और इनका इलाज बाद में नहीं किया जा सकता, जैसे कि धान में पौध गलन, आभासी कंडुआ, जड़ गलन, जीवाणु पत्ता अंगमारी, पद गलन और फसलों में दीमक, सफेद लट और बीमारियां पौधों को बिजाई के तुरंत बाद ही नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसके कारण पैदावार कम हो जाती है। इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि उपचारित करके बीजों को बोएं। अब एक एक करके हम अलग अलग फसल ले रहे हैं। धान की फसल ले लें। सबसे पहले स्वस्थ बीज का चुनाव करें। इसके लिए 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम साधारण नमक डालकर अच्छी तरह से घोल लें। इसके बाद 2 से 3 किलो बीज बारी बारी से इस नमक के पानी में डालें और फिर हिलाएं। ऊपर तैरते हुए जो बीज हैं वो अस्वस्थ होते हैं, तो इन हल्के बीजों को अलग करके नष्ट कर दें, क्योंकि इसमें बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह सारा बीज नमक के घोल में डालकर निकालें और उसके बाद नीचे बैठे हुए भारी बीज को चलते या बहते पानी में 2 से 3 बार धो लें, ताकि बीजों पर जो नमक चिपका है वो बह जाए या धुल जाए और उससे हमारे बीजों के अंकुरण पर बुरा प्रभाव ना पड़े। इसके बाद 10 लीटर पानी में थायोमेथॉक्सम दवा, इमिडाक्लोरपिड दवा और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा, इनको घोल लें और घोल में 10 से 12 किलो बीज 24 घंटे तक भिगोकर बीज को उपचारित करें। बीज को निकालकर छाया में सुखाकर उसके बाद ही बिजाई करें। इसी प्रकार बाजरे के लिए 10% नमक का घोल ले लें और जिस तरह से हमने धान में बताया था उसी प्रकार बीज को डालकर 10 मिनट तक चलाएं और ऊपर तैरते हुए अर्गट पिंडों को निकालकर अलग कर दें। बाद में इन हल्के बीजों को जलाकर नष्ट कर दें। घोल में जो नीचे बैठे हुए भारी स्वस्थ बीज हैं उनको बाहर निकाल लें और 1 पानी से अच्छी तरह से धो लें, जिससे कि बीज की सतह पर जो नमक का कोई अंश है तो वो हट जाए। यदि नमक का कोई अंश बीज की सतह पर किसी कारणवश रह जाता है तो उससे बीज के अंकुरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए धुले हुए सारे बीज को छाया में सुखाकर फिर उपचार करें। उपचार के लिए बोने के पहले 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 1 मिलीलीटर पेनफ्लुफेन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से सूखा उपचार करें। बीज की सिफारिश की गई मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ का उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें ये मात्रा हमने आपको बाजरे के लिए बताई है। अब जो किसान बहन भाई मक्का बो रहे हैं उनके लिए देसी मक्का के लिए 6 किलोग्राम बीज लगेगा और साठी मक्का के लिए 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। भूमि और बीज में लगने वाली बीमारियों से बचाव के लिए 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा, इससे सूखा ही बीज उपचारित कर लें। तिल के लिए भी 2 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है, इसमें 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर इसको उपचारित कर लें। मूंग, उड़द, अरहर, लोबिया और सोयाबीन, इन फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर के अलग अलग टीके आते हैं। ये टीके अलग अलग पैकेट में आते हैं। 1 पैकेट 1 एकड़ के बीजों के लिए पर्याप्त होता है। 1 खाली बाल्टी में 2 कप 200 मिलीलीटर पानी ले लें। इसमें 50 ग्राम गुड़ घोल लीजिए। 1 एकड़ के इस बीज पर गुड़ का घोल डालें और ऊपर से राइजोबियम का टीका छिड़क दें। बीजों को हाथ से अच्छी तरह से मिला लें और बिजाई से पहले बीज को छाया में सुखा लें। अब ये टीके तरल अवस्था में भी उपलब्ध हैं, उनको भी बीज पर छिड़क कर हाथ से अच्छी तरह से मिलाकर बिजाई आप कर सकते हैं। जड़ गलन की रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्वार के बीजोपचार के लिए 6 लीटर पानी में 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोल लें और इस घोल में 5 से 6 किलोग्राम ग्वार बीज आधा घंटे तक भिगो कर रखें। बीज को इस घोल से निकालकर छाया में सुखा लें। इसके बाद बीज को राइजोबियम का टीका और फॉस्फेटिका कल्चर से 1 एकड़ बीज के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से कल्चर के साथ दी गई विधि के अनुसार उपचारित करके छाया में सुखाकर फिर बुआई करें। बीज का उपचार करते समय पहले बीज को कीटनाशक से उपचारित करें, उसके बाद फफूंद नाशक से उपचारित करें, और अंत में जाकर फिर आप जीवाणु खाद लगाकर, जो कि हम राइजोबियम या फॉस्फेटिका बता रहे थे, फिर उपचारित करें। दवाई या पानी की बताई गई मात्रा उतनी ही प्रयोग करें जितना बताया गया है।
0: कृषि सामिकी में किसान भाई अभी सुन रहे थे धान की सीधी बुआई तकनीक संबंधी जानकारी विपिन यादव से। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:15 का वक्त होता है स्पॉटलाइट का, ये कार्यक्रम भी दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10 सुनिएगा डॉक्टर प्रभा अत्रे का राग मधुवंती में ख्याल गायन। संगतकार हैं तबले पर मुकुंद राजदेव, हारमोनियम पर अनंत राणे, तानपुरी पर रागनी और छाया साखरे। समय याद रखें आज रात 10:00। रात 10:30 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। लोक संगीत के कार्यक्रम में नीलम कुलकर्णी कलाकार होंगी शाम 6:30 पर, और सुबह 9:00 लोक रसधार में सुनिए मणिराम और साथियों के गाए लोकगीत और किरण श्रीवास्तव की गाई पारंपरिक रचनाएं। सुगम संगीत में कलाकार होंगी कीर्ति श्रीवास्तव, समय होगा शाम 6:45। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7:21 से। आज आप इसमें सुनेंगे श्री अवधेश कुमार पटेल से ली गई भेंट वार्ता, विषय है धनिया की उन्नत खेती। इसके अलावा सुनिएगा लोक संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6:00 से। वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं, इन दिनों श्रोताओं आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। आज 10:05 पर आप ये कार्यक्रम सुनेंगे। 10:10 से विश्व दर्पण कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:20 पर। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। समाचारों के लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र। सबसे पहले संस्कृत में समाचार होंगे।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झाः। अथ वार्ताः। प्रशासनेन CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा OSM इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एकसदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षः क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्षपदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तःकार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रान्तरे परिषदा गतवासरे 12 कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थम् उत्तर

0: पुस्तिकानां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं च अन्तर्जालपटलम् आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्याङ्कितानाम् उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मूवर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्तिलाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिकशैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मूवर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचितमार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्चन्यायालयस्य पञ्चन्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालयीय न्यायविदसमितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्तिविषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य 42 संख्याकेभ्यः उत्कृष्टपञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां 34 ग्रामपञ्चायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च 8 पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थविभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामि दिवसद्वयपर्यन्तं हरियाणा, चण्डीगढ, दिल्ली, छत्तीसगढ, झारखण्ड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्रान्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तरप्रदेशेषु तीव्रझञ्झावातेन सह गर्जनस्य तडित्पातस्य च सम्भावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु, महिलानाम् अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं 6 क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेय की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceutical. Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of the new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivkumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as chief minister, paving the way for his deputy to take over the post. West Bengal government will launch a major social welfare initiative, Annapurna Yojana, today. Chief Minister Subhendu Adhikari will formally inaugurate the scheme. The launch will be a massive synchronized event spanning the entire state. While the Chief Minister leads the central inauguration, beneficiaries of the Annapurna Yojana will participate virtually across all blocks, municipalities and municipal corporations. The centre has signed Memorandum of Understanding with four states under the Jal Jeevan Mission 2.0 to enhance safe drinking water supply across rural India. The agreement has been signed with Arunachal Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu, Nagaland and Union Territory of Puducherry. The Ministry of Jal Shakti said the reform-linked MOU promotes a Gram Panchayat-led, service-based and community-centred approach to rural water governance. The initiative, aligned with the objectives of Jal Jeevan Mission 2.0, aims to ensure that every rural household has access to quality drinking water supply in adequate quantity on a regular basis through strengthened community participation. The government has invited nominations for the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2026. The last date for submission is 31st of July. The prestigious award is conferred by the President on children who have made exceptional contributions in various fields including bravery, social service, environment, sports, art and culture, and science and technology. The Ministry of Women and Child Development informed that nominations from any citizen will be received only through the National Awards portal on awards.gov.in. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in an accident in Surat yesterday. 8 people were killed and more than 15 people were injured when two Maharashtra State road transport buses collided near Bardoli town in Surat. The injured were admitted to a nearby hospital. Indian nationals will no longer require an airport transit visa when travelling to a third country through German airports beginning today. German Embassy in India announced that the exemption will simplify travel for Indian citizens transiting through Germany on their way to other international destinations. The embassy described the decision as a reflection of the growing partnership between the two countries. It said the move underlines the German government's commitment to deepening ties between the two countries, facilitating the movement of people. Bangladesh's Foreign Minister Khalilur Rahman has been elected president of 81st session of UN General Assembly. Dr. Rahman emerged victorious in a closely contested election held in UN General Assembly, garnering 99 votes against Cyprus's special envoy for multilateralism, Andreas Kakouris, who got 91 votes. His one-year tenure as head of the Chief Deliberative, Policymaking and Representative Organ of the United Nations will commence in September. In accordance with the established regional rotation, the president of the 81st session was to be elected from the Asia-Pacific group. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has congratulated Dr. Rahman on his election as UN General Assembly president. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 International to clinch the series 2-1 at the country ground, Taunton, in England last night. India felt confident after taking 3 early wickets, but a commanding partnership between Heather Knight and Alice Kepsey helped England chase down 180 with ease. And that is the end of this news bulletin.

0: बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा, प्रदेश कैबिनेट में लिया गया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें, शुरुआत इंदौर से होगी। और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं प्रदेश में स्वामित्व योजना में जिन भूखंडधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं, उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाए। इसके लिए डीड ऑफ कन्वेंस का निष्पादन और पंजीयन किया जाएगा, ताकि नागरिक आवश्यकता अनुसार गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि संक्रियाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर भी जानकारी दी।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में जन सुनवाई के कैंप और इसके विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रचार माध्यम से इसमें जो सुझाव चाहिए जनता के, वे सारे लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस कार्य को पूर्ण करके मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के ओर हम आगे कदम बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है, ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में अब भी लोग जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं, और ये सेवा उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।
2: आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अलनीनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है, वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद

0: मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में UPI ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में UPI के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2312 करोड़ लेन देन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन UPI के जरिए हुए हैं। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाली स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा के दौरान मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिसके चलते गर्मी और लू का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में महिला स्वसहायता समूहों ने गेहूं उपार्जन अवधि में 7,712 किसानों से 5,27,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की। खंडवा में कल युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर ने जिले के रामा में सचिवों और पटवारियों की कल बैठक ली और डिंडोरी में जल संचय जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट ने लिया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें। शुरुआत इंदौर से होगी और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दे सकता है दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपके अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू का नमस्कार। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल होए सुभाए। ये सब दोहे हम सब ने अपने अपने बचपन में कोर्स के पाठ्यक्रम में यानी स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़े थे। तब शायद हमें उनका इतना अर्थ नहीं समझ आता था, क्योंकि जितना अर्थ हमारे शिक्षक या शिक्षिका हमें बता देते थे हम बस वही समझते थे और बस पास होने के हिसाब से उसको अच्छे से समझ के पढ़ लेते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, दुनियादारी समझ में आई तो इन दोहों का अर्थ भी समझ आया। निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखो। अब तो ऐसा कहना जरूरी भी नहीं है, अपने आप हमारे आसपास बहुत से ऐसे निंदक हमें मिल जाते हैं जो कई बार जानकर तो कई बार बिना वजह, कई बार वजह से कई बार बिना वजह निंदक करते हैं। और देखा जाए तो कहने को तो नौ रस हैं, पर इस निंदा रस में कई लोगों को बड़ा आनंद आता है, इसलिए तो इस निंदा के साथ रस जोड़ दिया कि निंदा करने में आनंद आ रहा है, रस की अनुभूति हो रही है। वैसे श्रोताओं, निंदा रस अच्छा हो सकता है, बशर्ते यदि आपका कोई सच्चा मित्र है, कम से कम जिसको आप अपना सच्चा मित्र मानते हैं या उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, तो उसकी निंदा, उसके लिए उसके बारे में निंदा रस दूसरे से करने के बजाय यदि उसमें वास्तव में कोई आदत बुरी है, कोई निंदा करने लायक बात है, तो वो उसको ही बताई जाए, जिससे यदि आप उसके शुभचिंतक हैं या मित्र हैं या उसके स्नेही जन हैं, तो आप उसको उसकी वो बात बताएं जिससे वो अपनी वो बात, वो बुराई, वो कमी को दूर करे और निंदा रस करने में लोगों को थोड़ी सी कमी आए। पर निंदा रस है ही ऐसा रस कि लोग चाहे या ना चाहे कभी कभार कर ही लेते हैं। हालांकि सोचने की बात यह है कि जब बहुत देर तक आप ऐसे रस में डूबे रहते हैं तो आप में खुद में कुछ ऐसी आदतें विकसित हो जाती हैं कि हमें दूसरों की बुराई बुराई ही दिखने लगती है। जबकि जिन लोगों ने ये दोहे लिखे हैं वो ये भी कह गए हैं कि बुरे से बुरे आदमी में भी कोई अच्छी बात होती है और अच्छे से अच्छे इंसान में भी कोई बुराई तो होती ही है। तो ये तो हमारी देखने वाली नज़र है। देखने वाली नज़र तो ये भी है कि हम जो कुछ भी कहते हैं सुनते हैं वो सब यहाँ रहता है, क्योंकि कहते हैं ना हमारे शब्द हमेशा ब्रह्मांड में उपस्थित रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से, आपकी अपनी रेडियो दोस्त साबनी राजू के साथ। बात कर रहे थे नौ रस की, और नौ रस के बाद निंदा रस जो दसवां रस है, इस निंदा रस में क्या करें कि बड़ा रस आता है। दरअसल कई बार क्या होता है, कई लोग केवल ये निंदा रस के कारण ही एक दूसरे के घनिष्ठ बन जाते हैं। मतलब कोई दो मिले तीसरे की निंदा

की घनिष्ठता आई गई। दो बात तुमने बताई, दो बात हमने बताई, दो दो मिलकर वो चार नहीं हुई, वो पांच हो गई। और इस तरह से वो पांच बातें पूरे में फैल गई। खैर, ये तो वो बात हुई कि जब निंदा करना बुरी बात है, ये हम सबको बचपन से सिखाते हैं, लेकिन निंदा करना तब अच्छी बात होती है जब आप अपने किसी मित्र की पीठ पीछे निंदा करने की बजाय उसको खुद, यदि उसमें सच में वो बुराई है आपको लगती है, ये बात निंदा नहीं कहलाएगी। जो सच में उस मित्र में खामियां हैं, जो दोष हैं, आपको लगता है कि यदि इन बातों को वो ठीक कर लेगा तो और बेहतर बन जाएगा और लोकप्रिय हो जाएगा, वो बातें आप उससे खुद कह सकते हैं। और यदि आप दोनों सच्चे मित्र हैं, शुभचिंतक सच्चे हैं, तो एक दूसरे की बात का कोई भी बुरा नहीं मानेगा। दरअसल ऐसा ही होता है हमारे आपके सबके साथ। कई बार किसी किसी दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी दिन डर लगता है, किसी किसी दिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये अच्छा लगने और नहीं लगने के बीच जो हमारे ज़रूरी मूलभूत काम होते हैं उनको तो हम करते ही हैं। तो फिर जब भी जो भी करें पूरी शिद्दत के साथ मन में उमंग उत्साह लेकर करें, तो हमेशा ऐसा लगता है लगेगा। फिल्म रिफ्यूजी का गीत अलका याग्निक के साथ सोनू निगम की आवाज़, दिल की बातें बयां करता ये गीत।

श्रोताओं, आज 3 जून है। 3 जून है, आप कहेंगे बिल्कुल सही, 2 के बाद 3 जून ही आता है, फिर 4 आएगा और उसके बाद 5। 5 यानी विश्व पर्यावरण दिवस, और आज है 3 जून यानी कि विश्व साइकिल दिवस। इन दिनों तो वैसे भी, क्योंकि साइकिल जितनी पहले प्रासंगिक थी उससे ज़्यादा प्रासंगिक अब है। यदि हमें फिट रहना है तो साइकिल ज़रूरी है, यदि हमें वातावरण को फिट रखना है तो भी साइकिल बेहद ज़रूरी है। जो आजकल की स्थितियां हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी कमी है, चाहे वो तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, या फिर वातावरण में असंतुलन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, इन सब के कारण भी यदि हम साइकिल को अपने दैनिक जीवन में, अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो ये एक अच्छी बात। सबसे पहले तो हमारे स्वयं के लिए है कि हम फिट रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, और सबसे ज़्यादा बात जब हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे आसपास का वातावरण भी स्वस्थ रहेगा तो फिर हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। कैसे? आप स्वस्थ हैं तो आप अपने परिवार की देखभाल अच्छे से रखेंगे, आप साइकिल चलाएंगे तो आपके आसपास वातावरण उतना ज़्यादा प्रदूषित नहीं होगा, और जब वातावरण स्वस्थ रहेगा तो आपके जो अपने हैं वो सब भी जब इस वातावरण में सांस लेंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे, है कि नहीं? दरअसल विश्व साइकिल दिवस एक विशेष दिन है जो 3 जून को मनाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अप्रैल 2018 में इस दिन को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। साइकिल की विशिष्टता हम और आप सब जानते हैं। 2 शताब्दियों से ये उपयोग में है। परिवहन का सरल, सस्ता, किफ़ायती, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन है साइकिल। बहुत से देशों में तो साइकिल चालन को प्रोत्साहित किया जाता है। अब तो हमारे यहाँ भी 1 या 2 दिन ही सही, लेकिन कई बार उच्च पदों पर पदस्थ जो शासकीय अधिकारी हैं या नेता हैं, वो सब साइकिल से अपने अपने कार्यालय जाते हैं। और उनका सीधा सा ये होता है फंडा या उद्देश्य कि दूसरों को इसके लिए आमजन को प्रेरित करना। विश्व साइकिल दिवस एक विशेष दिन है जिसका आनंद सभी लोग उनकी विशेषताओं की परवाह किए बिना उठा सकते हैं। दरअसल साइकिल को यदि आप देखें तो वो मानव प्रगति और उन्नति के रूप में साइकिल सहिष्णुता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है। सम्मान को बढ़ावा देने के साथ ये सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को सुगम बनाती है। इसके अलावा साइकिल एक सतत परिवहन का प्रयोग है और ये सतत उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देती है। साइकिल हमारी सेहत को अच्छा रखती है तो हमारे आसपास के पर्यावरण की सेहत को भी दुरुस्त रखती है। अभी कुछ दिनों पहले श्रोताओं, बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, इनमें से इस 1 धाम में जाना हुआ। आप क्या यकीन मानेंगे कि वहाँ राह में कुछ लोग ऐसे मिले जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आ रहे थे, यानी अयोध्या और ना जाने और किस किस हिस्से से वो 4 धाम तक साइकिल पर यात्रा कर रहे थे और बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्होंने एक निश्चित दूरी तय कर रखी थी तो बस वो दूरी वो तय करते थे और उस दूरी को तय करने के दौरान जहाँ कहीं भी उन्हें ठौर ठिकाना मिलता था वो रुक जाते थे। वैसे साइकिल पुराने ज़माने से लेकर आज तक हमेशा से प्रासंगिक है। वजह कुछ भी हो सकती है।

श्रोताओं, तो अब अपने दैनिक जो आपका जीवनचर्या है उसमें साइकिल को ज़रूर स्थान दीजिए। साइकिल पहले तो याद कीजिए कि किराए से मिलती थी, 1 रुपये 2 रुपये प्रति घंटा तब मिल जाती थी। साइकिल लेकर आते थे और

भैया साइकिल चलाते थे, पूरी गली का चक्कर लगाते थे। उस भरी दोपहरी में ये नहीं देखते थे गर्मी है, धूप है, गर्म हवा है, बस ऐसा लगता था कि इस साइकिल पर पूरी दुनिया घूम लेंगे। ऐसा ही तो हमारा और आपका देश है कि हमारे इस देश में साइकिल है तो बड़ी से बड़ी महंगी कार भी है। लेकिन आज विश्व साइकिल दिवस के दिन ये याद रखिए कि साइकिल आपकी और आपके आसपास के वातावरण की, दोनों की सेहत सुधारती है।

श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। इसके लिए गीतों के लिए हमें सहयोग दिया लाइब्रेरी से राजेश मरकाम ने। इस कार्यक्रम को आपके रेडियो सेट तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोगी यानी साथ में कंट्रोल रूम में थे नीरज श्रीवास्तव और संजय पाटकर। इस कार्यक्रम के संयोजक श्याम लाल टहलानी और मैं आपकी रेडियो दोस्त सावनी राजू। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। पहले हिंदी में समाचार प्रभात और फिर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज। समाचारों के लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की, भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
6: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
7: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
6: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर

0: मिलती है।
1: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी

0: प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader DK Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela Delcy Rodriguez will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister

डिस्को डांसर फिल्म का ये गीत नंदू भेंडे और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी पप्पी लहरी ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बाजीगर से। इस गीत में आवाज़ है आशा भोसले और विनोद राठौर की।

साजन बिना सुहागन। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे यशोदास का गाया। इंदिवर ने इस गीत को लिखा था और उषा खन्ना का संगीत था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। फिलहाल 8:58 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत की यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं, ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। भोपाल के चर्चित तो ट्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लोक रसधार इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मणिराम और साथी और किरण श्रीवास्तव। पहले आपको सुनवाते हैं मणिराम और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मणिराम और साथी और किरण श्रीवास्तव। फिलहाल आप किरण श्रीवास्तव के गाए लोकगीत सुन रहे हैं।

श्रोताओं, ये झलक है उस गीत की जिसे आप अभी सुनेंगे। कार्यक्रम है फिल्म संगीत, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रसथार। आज के इस कार्यक्रम के गायक कलाकार थे मणिराम और साथी और किरण श्रीवास्तव। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया, गुलशन बावरा का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया। फिल्म है हाथ की सफाई।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म पेंटर बाबू का ये गीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। पाकीज़ा फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़, कमाल अमरोही के शब्द, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

अनवर की आवाज़ में लीजिए अब सुनिए जनता हवलदार फिल्म का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

जनता हवलदार फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी के लिए चलते हैं भोपाल केंद्र अब से कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश कुमार यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से गाँवों में किसानों को ई टोकन आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और संतुलित उर्वरक उपयोग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर बीते दिनों व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें थीम पर आधारित इस अभियान के तहत डेंगू जन जागरूकता प्रचार रथ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। प्रचार रथ के माध्यम से डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव संबंधी संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में डेंगू की जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की समय पर सहायता कर उसकी जान बचाने वाले झाबुआ निवासी भावेश सोलंकी को बीते दिनों राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में जिला चिकित्सालय भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, सोनोग्राफी उपकरण क्रय करने, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी ऑडिट संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक 3 माह में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। जिले में आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों राणापुर बस स्टैंड का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, बस संचालन और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने हाट बाजार के दिनों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्याओं से अवगत कराया। जल संसाधन विभाग ने माही परियोजना की नहरों के मरम्मत कार्यों के लिए 16,68,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी की है। लगभग 284 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से वर्तमान में 19,000 से अधिक किसान और करीब 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित हो रही है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत झाबुआ जिले ने प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले के सभी 6 विकास खंडों में आयोजित 559 संतृप्त शिविरों के माध्यम से 32,000 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। अभियान के दौरान आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड और उज्ज्वला योजना की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। वर्तमान में जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और पोटाश सहित विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। किसान ई विकास पोर्टल के माध्यम से ई टोकन प्राप्त कर अपनी आवश्यकता अनुसार उर्वरक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने फल एवं सब्जियों के सुरक्षित भंडारण और उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को धोकर और सुखाने के बाद ही साफ कपड़े या पेपर टॉवल में लपेट कर रखें और प्लास्टिक की बंद थैलियों की बजाय नेट बैग का उपयोग करें। फ्रिज का तापमान निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने तथा सब्जियों और फलों का स्वच्छ उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण बीते दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सहभागिता करते हुए कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जन जागरूकता का सशक्त मंच बन चुका है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कृषि मंडी परिसर झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय भीली बोली में गीतों और प्रदर्शनी के माध्यम से तंबाकू व अन्य नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कार्यबल की बैठक का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस बैठक में बताया गया कि 28 जून को जिले भर में पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि इसके बाद 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। झाबुआ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे झाबुआ जिले की चिट्ठी। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सदी।

वंदे मातरम। वंदे मातरम जिसके हम 150 वर्ष पूरे होने का साल भर से वर्ष भर से समारोह मना रहे हैं। वंदे मातरम ये एक शब्द है, एक नारा है, एक विश्वास है, एक आवाज़ है आम जन के दिलों के उमंग की, जोशो खरोश की। यह आवाज़ है आज़ादी के दिनों में क्रांतिकारियों के जोश उमंग और उत्साह की। बंकिम चंद्र चटर्जी ने या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसकी रचना की थी। माना यह जाता है कि 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन इसे लिखा गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया है। 7 नवंबर 2026 तक ये वंदे मातरम गौरवगान की डेढ़ सदी से संबंधित समारोह चलते रहेंगे। इस गीत को, इस रचना को 1882 में आनंदमठ फिल्म में शामिल किया गया। यूं वंदे मातरम को मूलतः बंदे मातरम कहा गया था और लिखा गया था, लेकिन चूंकि बंदे संस्कृत में शब्द नहीं है तो ये वंदे मातरम हो गया। वंदे मातरम के पहले दो पदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया और अब तो ये वंदे मातरम के संपूर्ण पद, तीनों पद गाए जाते हैं। ये वंदे मातरम हमारे भारतीयों के दिलों की आन बान और शान है।

0: आप सुन रहे थे वंदे मातरम गौरवगान की 150वीं सदी। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:10 होने वाले हैं। विश्व दर्पण के लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। तिब्बत में चीन के नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के निर्धारण संबंधी विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता

0: आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और लोगों को संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि चीन ने मौजूदा क्षेत्रीय संकट के दौरान ईरान को सैन्य सहायता दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास चीन में बने कुछ सैन्य उपकरण जरूर हैं, लेकिन हाल के संघर्ष में चीन की किसी भी ऐसी कार्रवाई का पता नहीं चला है जिससे सैन्य संतुलन प्रभावित हुआ हो। श्री रूबियो ने चीन से अपील की कि वो संयुक्त राष्ट्र में अधिक रचनात्मक भूमिका निभाए, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री यातायात सुचारू रखने के प्रयासों में। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य नीति का मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक हथियारों की क्षमता को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। श्री रूबियो ने दावा किया कि हाल के अमेरिकी सैन्य अभियानों से ईरान की सैन्य क्षमता में काफी गिरावट आई है। ईरान की नौसेना अब काफी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी कार्रवाई में ईरान के ड्रोन उत्पादन ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। अमेरिका की सेना ने कहा है कि कुवैत और बहरीन की ओर दागी गई ईरान की मिसाइलें या तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाईं या उन्हें बीच में ही रोक लिया गया। सेना ने यह भी कहा कि इसके बदले में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमान के अनुसार ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट क्वेश्म द्वीप पर स्थित ईरानी सैन्य जमीनी नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाकर किए गए। इस द्वीप पर एक डिसेलिनेशन संयंत्र भी है। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी सेना ने कहा कि कुवैत की ओर दागी गई दो मिसाइलें रास्ते में ही नष्ट हो गईं, जबकि बहरीन की ओर दागी गई मिसाइलों को अमरीका और बहरीन की सेनाओं ने बीच में ही रोक लिया। स्थानीय मीडिया खबरों के अनुसार ये घटनाक्रम तब सामने आए जब ईरान ने युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने के संबंध में मध्यस्थों से बातचीत बंद कर दी। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि बातचीत जारी है। एक अन्य घटनाक्रम में अमरीका की सेना ने कहा कि उसने अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरानी बंदरगाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे तेल टैंकर को रोकने के लिए एक मिसाइल दागी। सेना ने कहा कि नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में रोका गया ये सातवां जहाज था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है जिसके अंतर्गत विदेश विभाग को यह निर्धारित करना होगा कि क्या चीन ने तिब्बत के लोगों के खिलाफ नरसंहार या मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं। इससे मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर चीन पर कांग्रेस का दबाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यूजर्सी के रिपब्लिकन सांसद क्रिस स्मिथ और न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सांसद टॉम स्वोजी ने कल तिब्बत अत्याचार निर्धारण अधिनियम पेश किया। इसके अंतर्गत विदेश मंत्री को अधिनियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों का आकलन करते हुए कांग्रेस को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस विधेयक में तिब्बत के बौद्ध धर्म के चीन के अनुसार और तिब्बती भाषा और संस्कृति के दमन के उद्देश्य से चीन की सरकार की कार्रवाइयों की समीक्षा का भी प्रावधान है। रिपोर्ट में विदेश विभाग के निष्कर्षों और तीसरे पक्ष के विश्लेषणों का उपयोग किया जाएगा और प्रतिबंधों, वीजा प्रतिबंधों और राजनयिक उपायों सहित अमेरिका की संभावित प्रतिक्रियाओं की सिफारिश की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के तहत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के तहत अब प्रथम वर्ष के 100 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। ये सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान प्रांत में खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए अभियानों में 17 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना के अनुसार पिछले महीने क्वेटा के निकट हुई ट्रेन बम विस्फोट की घटना के बाद मस्तुंग, नुश्की, जेहरी, खुजदार और केच जिलों में ये अभियान चलाए गए। इस विस्फोट की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। आज विश्व साइकिल दिवस है। ये विशेष

0: देश दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को दिया गया। SAAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का सामना सेमीफाइनल में भूटान से होगा। ये मुकाबला गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम ग्रुप बी में सभी मैच जीतकर शीर्ष पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। तिब्बत में चीन के नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के निर्धारण संबंधी विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। सारंगा कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सिर्फ तुमसे साबरी बंधुओं की आवाज में। इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, भावना नेमा, प्राची नेमा, संगीता नेमा। नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल उमेश, सरोज रेखा, रितिका ऋचा, स्वीटी सागर, रीमा और ऋषभ राजावत। इसी गीत को सुनने के लिए हमें चिट्ठी लिखी है आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लकी सिन्हा।

ताल फिल्म का यह गीत था, कविता कृष्णमूर्ति के साथ सुखविंदर सिंह की आवाज थी। इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। नर्मदा कॉलोनी मंडला से प्रोफेसर सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी, लकी, रोली, श्वेता और परु। ग्राम पिंडरई जिला मंडला से सुमत कुमार जैन, मीना जैन, कबीर जैन, वरुण जैन और वान्या जैन। इसी गीत को पसंद किया था आलम दिलकश ने। आपने ये चिट्ठी हमें भेजी है जतुका किशनपुर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म स्वदेश से। इस गीत में आवाज़ है अलका याग्निक की। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे गायत्री अय्यर और शाहरुख खान। आशुतोष गोवारिकर ने यह फिल्म बनाई थी। इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। जतुका से शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कासर, मोहम्मद वकील, फिरोज आलम, नाश प्रवीण और इनके परिजन। इसी गीत के लिए हमें चिट्ठी लिखी है उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहणकर, सरिता गवहणकर, प्रिंस एकांश गवहणकर, नागपुर से वैशाली शैलेश गवहणकर, श्वेता सुमित गवहणकर और ध्वनि गवहणकर ने, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहणकर और प्रणीता गवहाकर ने।

हेमंत कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे हैं 16वां साल फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा है मजरू ने, संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान, सितारा देवी खान, मोहम्मद दिलशाद पठान। रायसेन से तुलसीराम साहू, आरती ममता, हेमंत गोमती और मुकेश साहू। तेंदुखेड़ा से ओम प्रकाश नामदेव और इनके परिजन। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। आप सुन रहे हैं 16वां साल फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज़।

0: 16 साल फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। आज के इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:58 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के तहत हम चलते हैं भोपाल केंद्र। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस।
1: अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था ने यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई माह में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2,312 करोड़ लेन देन हुए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपये रही है। केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित राष्ट्रीय महत्व के 13 प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष सर्वाधिक 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया है। समर्थन मूल्य पर 13,42,000 किसानों द्वारा गेहूं का विक्रय किया गया, जो कि गेहूं विक्रय करने वाले किसान संख्या की दृष्टि से पूरे भारत में सर्वाधिक है। और मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: जी रेडियो तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और स्टडी कोड आप जानते ही हैं 0755। कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्कार,
0: स्वागत है आपका हमारे फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद दीदी। मैं राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ, यहाँ राजा राम नगर देवास मध्य प्रदेश से।
0: राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आपके कॉल भी बहुत लगते हैं आकाशवाणी में।
1: क्यों बहुत का, हफ्ते भर पिछले मंगलवार को लगाया था जिसका आज लगा रहा हूँ दीदी।
0: चलिए कोई बात नहीं, एक्चुअली मैंने पिछले ट्यूसडे को आपकी बात हुई थी और वेडनेसडे को भी देखा था मैंने आपका नाम, इसीलिए।
1: नहीं यहाँ नहीं लगाया।
0: चलिए कोई बात नहीं,
1: कोई दूसरा नाम से
0: ठीक
1: होगा।
0: ठीक हाँ हो सकता है।
1: आज बरोबर हफ्ते भर में ही लगाया दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है राजेश जी, क्योंकि यदि कोई भी श्रोता एक हफ्ते के पहले कॉल लगाता है और हम उससे बात कर भी लेते हैं, लेकिन यदि हम देखते हैं कि एक हफ्ते के बीच में उसकी बात हो चुकी है, तो हम उसका कॉल फिर प्रोग्राम में नहीं ले पाते, बस इतनी सी बात है।
1: हाँ, कई श्रोताओं ने लगाते हैं। खास तो हमारी शिकायत ये है कि दीदी ये जो लेटर का कार्यक्रम हो रहा है फरमाइश का,
0: हाँ
1: उसमें पत्र बिल्कुल नहीं लिए जा रहे हैं, छांट के जैसे वो क्या वही गड्डी, एक ही गड्डी रोज वही ली
0: नहीं
1: जाती
0: नहीं
1: है,
0: ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: ऐसा
0: इतने
1: क्यों हो रहा?
0: हमारे श्रोताओं की गिनती नहीं है, तो वो तो
1: नहीं
0: जो जैसे हाथ में आते जाते हैं वैसे ही लेटर्स पढ़ते हैं,
1: नहीं वहाँ
0: और एक ही
1: वहाँ सब
0: गड्डी नहीं पढ़ी जाती है, बहुत सारे। आप कभी आकाशवाणी आएंगे?
1: हम तो होके गए ही हैं वहाँ पे, अभी अक्टूबर में आए थे जैसे स्थापना दिवस पे,
0: अच्छा अच्छा
1: आपको
0: अच्छा
1: मालूम नहीं हो भले ही,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि वही के वही तिलक राणा डोमन ठाकुर ये जो दो चार नाम रटे हुए रोज के रोज वही के
0: नहीं
1: वही
0: नहीं
1: लिए
0: रटे
1: जा रही
0: नहीं
1: है।
0: है वो, ये होता है कि एक ही श्रोता कई बार है ना 50-50 कार्ड डाल देता है, तो
1: नहीं
0: उसका
1: तो है तो
0: नंबर
1: भले ही वो
0: रोटेशन में
1: डाल,
0: आता जाता है।
1: बाकी जैसे ये इंदौर के देवास के यहाँ के भी तो लेना चाहिए ना, भले ही वो डाले हजार
0: बिल्कुल
1: डाले,
0: बिल्कुल
1: बाकी हमारा
0: चलिए
1: क्या होएगा फिर
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात
1: हाँ।
0: पे बिल्कुल चर्चा
1: और
0: करेंगे और आपका कॉल लिया जाएगा। अभी तो आप ये
1: हाँ
0: बताइए, फोन करें गीत सुने में आपने कॉल किया है, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये दीदी आज जैसे सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं रही है,
0: हाँ हाँ
1: जैसे कल ही परसों उनका निधन हो गया
0: बिल्कुल
1: है, तो
0: जी,
1: उनकी याद में जैसे गीत ये पहचान पिक्चर का सुनवा दीजिए, वो परी कहाँ से लाऊं, या फिर आया ना तुमको प्यार जताना, ऐसा गीत है मुकेश जी के साथ है उनमें गीत
0: पहचान फिल्म का यह
1: पहचान पिक्चर
0: ओ परी
1: है। हाँ
0: कर,
1: वाला ले लीजिए, या फिर मुकेश जी के साथ में उनका ड्यूएट भी है पहचान
0: हाँ
1: पिक्चर का, उन्हीं का गाया हुआ गीत सुनवा दीजिए, सुमन
0: हाँ अच्छा ठीक है। और
1: कल्याणपुर जी को समर्पित है ये
0: हाँ कौन सा वाला, सेकंड कौन सा बोला है आपने?
1: सेकंड, ये आया ना हमको प्यार जताना, ऐसा
0: अच्छा
1: गीत है।
0: ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बिल्कुल ये गीत सुनवाएंगे।
1: ये हमारी बात थोड़ी सी रख देना मैनेजमेंट के सामने, ये
0: बिल्कुल रखेंगे।
1: लेटर के बारे में आरजे लेटर बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, एक एक एक गीत पे एक ही लेटर लेते हैं वो।
0: चलिए बिल्कुल हम बात करेंगे इस विषय पे। राजेश जी
1: हाँ
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में होंगे। जिस
1: धन्यवाद।
0: तरीके से आपसे बात कर रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा ही लेटर्स में भी हो जाता है। ठीक
1: हाँ
0: है
1: यूँ
0: चलिए,
1: धन्यवाद
0: नमस्कार
1: दीदी।
0: जी, नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी, नमस्ते। मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे। संगीता
0: छतरपुर से सुनीता पटेल, अनीता,
1: जी, संगीता
0: संगीता।
1: जी मैम जी,
0: चलिए संगीता, आपसे पहले भी बात हो चुकी है हमारी, है ना?
1: आप कविता मैम बोल रहे
0: हाँ
1: हैं
0: जी।
1: जी?
0: और कैसी हो संगीता?
1: जी ठीक है।
0: और आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो?
1: आज सुनना चाहते हैं करण अर्जुन फिल्म का,
0: अच्छा, कौन सा वाला गीत इसका?
1: बंधन, दिलों का बंधन।
0: अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत है ये।
1: जी
0: बंधन तो
1: मैम,
0: प्यार का
1: आपके
0: बंधन
1: यहाँ
0: है।
1: मौसम कैसा है?
0: हाँ, मौसम में गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है, ऐसा कह सकते हैं। बारिश बारिश हो
1: जी
0: जा रही है बीच बीच में, आंधी
1: मैम, यहाँ भी
0: तूफान।
1: थोड़ी राहत मिली है क्योंकि पानी 2-3 दिन बरसा है। जी
0: हाँ, और आंधी तूफान टाइप बहुत मौसम ऐसा हुआ है
1: जी
0: ना।
1: दोनों साथ में एक आए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो संगीता जी,
1: जी
0: कल के प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत बिल्कुल सुनिएगा, ठीक है? कॉल
1: जी
0: करने के
1: जी
0: लिए
1: जी
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: ओके।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका। आप शिव नारायण तिवारी जी बोल रहे हैं?
1: जी मैम, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पहचाना आपने।
0: जिस तरह से हमें श्रोता पहचान जाते हैं आवाज से, कई बार हम लोग भी है ना अपने श्रोताओं की आवाज पहचानने लगते हैं।
1: मैम मालूम चल गया था कि आप आज प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में हैं,
0: अच्छा, ऐसा है? अरे वाह, क्या बात है।
1: तो
0: और
1: मैंने
0: क्या
1: किया
0: हाल है
1: जान
0: आप
1: लिया
0: सभी के? हाल
1: जी।
0: कैसे हैं आप सभी के?
1: बढ़िया है हाल मैम, बहुत बढ़िया। अब तो गर्मी थोड़ी कम हो गई है।
0: हाँ, हल्की सी कम हुई है।
1: काम
0: और कामकाज कैसा चल रहा है?
1: काज बढ़िया चल रहा है, कथा वार्ता पूजा होती रहती है, पंडिताई चलती रहती।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा बताइए शिवनारायण जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आप सुनवाए आज नंदिनी को डेडिकेट और रानू गुप्ता जी को, आपको
0: हाँ,
1: भी।
0: थैंक यू।
1: आज का गीत है वो है खतरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा ठीक है, बिल्कुल ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसका कौन सा गीत?
1: तुमसे बना मेरा जीवन
0: बहुत अच्छा गीत है तो,
1: जी
0: और मिल भी गया है हमें, तो ये हम आपको जरूर सुनाएंगे।
1: जी
0: ठीक है, चलिए तो फिर कल के प्रोग्राम में सुनिएगा अपनी
1: जी
0: पसंद का गीत। थैंक यू,
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते।
0: कौन है ये इतनी बार नमस्ते करने वाले हमारे श्रोता?
1: मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल। फूलचंद जी, आपने बहुत टाइम बाद बात की है हमसे।
1: लगता है कविता मैडम बोल रही हैं आप।
0: जी हाँ बहुत पहचाना आपने, थैंक यू वेरी मच।
1: मैं कविता ही आपसे बात करने को तड़प रहा था।
0: सच में?
1: सच में बिल्कुल तड़प रहा था कि मैं क्या बताऊं कविता जी से, कैसे बात होगी, कब आप कविता जी का नंबर लगेगा, कब मेरी बात हो जाएगी। और आज मेरा ईश्वर ने सुन लिया।
0: देखिए इतना अच्छा, तो कुछ अच्छा अच्छा सोचा होता ना, इतनी सी बात में ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई।
1: जी। कविता जी, वाकई में जो है आपकी आवाज बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रिय है।
0: थैंक यू वेरी मच। और सुनाइए, मौसम कैसा है छतरपुर का?
1: कविता जी, मौसम तो बड़ा ही सुहावना है और बड़ा ही लुक्का छुपा वाला मौसम है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बादल छुप जाते हैं, कभी बादल फिर आ जाते हैं, और दोपहर में थोड़ा गर्मी होती है और शाम सुबह ठंडी होने लगती है।
0: बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही है शाम को तो।
1: जी। और कुछ पानी यानी हमारे यहाँ छतरपुर जिले में गिर गया है, और खजुराहो का भी मौसम नजारा बहुत ही गलत गजब है। अब तो आपका घूमने का मौका आ गया
0: अब तो आना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जून लास्ट वीक में
1: है।
0: पक्का प्लान करेंगे हम खजुराहो आने का।
1: जी, बिल्कुल। खजुराहो के मंदिर आपको बुला रहे हैं कि कविता जी आइए आइए आप, हम जो है, और आप जल्दी ही आएंगी लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फुलचंद जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल कविता जी, फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी,
0: अच्छा ये क्या बात है, आज
1: और
0: तो है ना ये।
1: गीत गीत
0: हाँ,
1: के बोल हैं कि पास पास वो आने लगे जरा जरा।
0: मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।
1: जी,
0: हाँ जी, मिल गया हमको ये गीत तो, बहुत
1: और
0: अच्छा है।
1: ये गीत कविता जी आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और दिनकर सिंह जी हैं,
0: हाँ
1: और विजय कुमार पांडे जी हैं, और सभी जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा। और पूनम बहन है हमारी कानपुर से, तो
0: अच्छा,
1: उनको भी डेडिकेट रहेगा, क्योंकि रेडियो से हमारे इतने सारी बहनें, इतने सारे मित्र मिल गए हैं कि हम कभी सोचते भी नहीं थे कि इतने
0: बिल्कुल
1: कहाँ
0: सही
1: मिलेंगे।
0: बात है, वाकई एक बहुत अच्छा
1: जी जी
0: परिवार है हमारा रेडियो,
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल। और देखिए कि कविता जी, रेडियो श्रोता जो बनता है वो बहुत ही दिलदार होता है जब बन पाता है।
0: बिल्कुल सही बात है ये। चलिए, कॉल
1: जी।
0: करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारे दूसरे कॉलर्स भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनका कॉल लगे। ठीक है
1: जी, बिल्कुल, सभी
0: जी
1: श्रोताओं का
0: फुलचंद जी।
1: फोन लगे। बहुत
0: जी
1: बहुत कविता
0: जी
1: जी, आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार,
0: जी आपको भी धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: जिला सीनी ग्राम पातरफोड़ी से राहुल ध्रुवे बात कर रहा था। ध्रुवे,
0: राहुल धुर्वे।
1: हाँ जी।
0: हाँ जी राहुल, बताइए कैसे हैं आप।
1: अभी तो गर्मी पड़ रही है, थोड़ा मतलब पानी भी गिरा है कल, तो थोड़ा सा ठंडक है जरूर है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले काफी गर्मी थी।
0: अरे भाई, हमने तो मौसम के बारे में थोड़ी ना पूछा है, आपके बारे में पूछा है, आप कैसे
1: हम भी अच्छे हैं मैम अभी तो।
0: हैं चलिए, क्या काम
1: और
0: करते हैं
1: आप?
0: राहुल जी
1: हाँ जी,
0: अभी, आप काम क्या करते हैं।
1: मैं वीडियो कॉन डीटीएच के ऊपर जॉब करता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज।
1: जाने अनजाने मूवी का है। हाँ,
0: जाने अनजाने,
1: पिया पिया वो पिया पिया।
0: एक मिनट हम सर्च कर लें पहले, है कि नहीं। जाने अनजाने, मिल गया, लेकिन इसमें पिया पिया वाला गाना तो नहीं दिख रहा है मुझे।
1: हाँ मैम,
0: आप कोई और उसका कोई बोल जो शुरू के है ना, वो कुछ और होगा।
1: नहीं, प्रिया प्रिया तू चांद है पूनम का।
0: चलिए मैं एक बार और देखूंगी, नहीं है यहाँ पर उसका। जाने अनजाने जरूर उसकी शुरुआत क्या जाने अनजाने से है क्या।
1: नहीं, प्रिया प्रिया हो प्रिया
0: छमछम
1: प्रिया।
0: बजे रे पायलिया उससे है।
1: नहीं,
0: अच्छा, तेरी नीली नीली आंखों के।
1: चांद है पूनम का, ऐसा
0: चलिए
1: है कुछ
0: अच्छा,
1: करके।
0: मैं देखती हूँ जाने अनजाने फिल्म का पिया पिया। यदि
1: पिया
0: ये गीत
1: पिया वो
0: नहीं
1: पिया
0: मिला
1: पिया तू चांद है पूनम का,
0: ठीक है, और अगर ये गीत नहीं मिला तो फिर कौन सा गीत सुनेंगे आप।
1: इसमें आप मतलब
0: इसी फिल्म
1: साजन का
0: का,
1: घर का कर दीजिए। हाँ,
0: साजन के घर का, उसका कौन सा गीत।
1: इसका नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए।
0: चलिए, गाने तो आपने बहुत ही अच्छे चॉइस किए। ठीक
1: मैम,
0: है,
1: मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ कहिए।
1: इसमें मैंने मतलब इससे पहले 15 दिन पहले कॉल किया था, तो मेरा नाम ही नहीं आ पाया था इससे।
0: कभी कभी ऐसा होता है कि है ना, श्रोता हमारे बहुत सारे हो जाते हैं, उनके कॉल्स हम लोग ले लेते हैं, और जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो हमको सिर्फ 58 मिनट का ये प्रोग्राम तैयार करना होता है, तो कुछ कॉलर्स हमारे छूट जाते हैं इस चक्कर में।
1: तो मैम, मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ
1: अगर मान लीजिए कॉल अगर ज्यादा 11 बजे, जैसे 10:30 से 11 तक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप,
0: जी,
1: तो गानों को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन जो कॉलर हमारे जुड़ते हैं उनको तो मतलब शामिल कर लीजिए, तो ये बेहतर हो पाता है।
0: चलिए कोशिश करेंगे आपकी कही बात पे अमल किया जाए। ठीक है राहुल जी,
1: हाँ जी, दोस्तों का नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल, फटाफट ले लीजिए क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश सागर से इतिन कटारे, और शिमला से रहेंगे राकेश जी।
0: चलिए, धन्यवाद राहुल जी कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: धन्यवाद मैम।

0: है, बिजली चमकी है, बिजली खड़की है, तो थोड़ा मौसम का
1: चलिए
0: आप
1: ठीक है। क्या हाल है राजू जी आपके?
0: जी। हम तो ठीक है दीदी, और हम जानना चाहेंगे हमारी आकाशवाणी भोपाल टीम कैसी है।
1: हमारी टीम बहुत बढ़िया है, आप सबका स्नेह हमारी टीम के साथ है तो अच्छी ही होगी।
0: बिल्कुल दीदी, हमारी भी यही कामना है, आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें, ताकि हमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी सुनने को मिले, और आप सब लोग ऐसे ही मस्त मस्त बने रहें, सभी लोग
1: चलिए
0: फिट और
1: बहुत
0: फिट।
1: बहुत आभार आपका राजू जी, इतनी अच्छी अच्छी विशेष देने के लिए। और बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: दीदी सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ कोई भी गीत सुनवा दीजिए, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी अभी इस दुनिया में नहीं रही हैं।
1: बिल्कुल, तो उनको आप श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, हम अपनी तरफ से भी और सभी श्रोताओं की तरफ से भी और
1: बिल्कुल,
0: आकाशवाणी भोपाल की पूरी टीम की तरफ से
1: बहुत
0: हम
1: बहुत
0: उन्हें
1: धन्यवाद,
0: भावभीनी
1: आपने
0: श्रद्धांजलि
1: बहुत
0: देते
1: अच्छा
0: हुए
1: सोचा
0: उन्हें
1: है।
0: याद करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा है। हम आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे, कल के प्रोग्राम में आप अवश्य सुनिएगा।
0: ओके दीदी,
1: ठीक,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते
1: नमस्ते मैडम। गाना
0: नमस्ते। हाँ,
1: सुनना है मैडम?
0: नाम तो बताइए। हसीना
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से। अमीना
0: भी मंसूरी।
1: अमीना
0: अमीना,
1: जी मैडम, उस दिन में लगाया है मैंने। अच्छी
0: अच्छा। हाँ जी, कैसी हैं आप?
1: हूँ मैडम, अब तो आपकी दुआ है।
0: इंदौर से बोल रही हैं ना?
1: हाँ, इंदौर से बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से। बहुत दिन में
0: चलिए,
1: लगाया मैडम, थोड़ी तबीयत ऐसी थी मेरी।
0: क्यों, क्या हो गया था आपको?
1: अरे मेरे को ये थोड़ा सा जी लग रहा था, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो एकदम से उल्टी होने लगी, तो भर्ती कर दिया था अस्पताल में। तो अब तो
0: ओहो,
1: आराम है मैडम, बहुत आराम है अब तो।
0: चलिए, लेकिन रेगुलर अपना ध्यान रखा करिए और बीपी की दवाई टाइम से खाया करिए।
1: जी मैडम, गोली तो खाती हूँ, मतलब थोड़ा कमजोरी हो गई थी ना।
0: हाँ, चलिए, आप पहले अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखिए, यही हम सबकी दुआएं हैं, ठीक है?
1: जी मैडम, फिल्म
0: चलिए, अच्छा बताइए, आज कौन से गीत सुनेंगी?
1: इज्जत, फिल्म इज्जत गाने के बोल, क्या
0: हाँ,
1: मिलना है ऐसे लोगों से जिनकी,
0: अच्छा
1: हाँ जिनकी फितरत छुपी रहे। जी
0: अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल, अवश्य जरूर सुनवाएंगे ये गीत हम आपको। और अगर ये गीत ना मिला तो
1: मैडम,
0: क्या
1: आपकी आवाज
0: मिलना?
1: बिल्कुल धीरे आ रही है, बड़ी मुश्किल से सुन पा रही
0: हाँ,
1: हूँ।
0: सही कह रही हैं आप, आवाज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है अमीना जी, थैंक यू। कल के प्रोग्राम में अपना गीत सुनिएगा।
1: जी मैडम, थैंक
0: नमस्ते।
1: यू मैडम,
0: ओके,
1: आपको भी नमस्ते मैडम।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो,
0: जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: मैं वरेला से वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ।
0: मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये आवाज सुनी सुनी है।
1: हाँ मिता दीदी, नमस्ते नमस्ते। बहुत दिनों बाद आई आप।
0: देखो वंदना जी,
1: फिर
0: फिर आपको गलतफहमी हो गई।
1: कविता दीदी बोल रही ना,
0: जी हाँ।
1: आपसे बात हुई थी मेरी कविता दीदी।
0: बिल्कुल, वो तब भी आप ऐसे ही कंफ्यूज हुई थी। तो
1: हाँ, बिल्कुल देखा, उसके बाद आज लगा रही हूँ मैं फोन। फर्क
0: आप ही बताओ, आपको अमिता दीदी में और कविता दीदी में फर्क नहीं नजर आ रहा?
1: आवाज क्या है दीदी, स्लो आती है इसमें, और जब रेडियो पे सुनते हैं तो क्लियर आवाज आती है थोड़ी।
0: अच्छा, ये
1: हाँ
0: चक्कर है। चलो कोई बात नहीं। हाँ वंदना जी, बताओ आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज गाना सुना दी, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी
0: अच्छा,
1: चोरी मेरे दिल में समाते हो।
0: कौन सी फिल्म का है ये गाना?
1: गाना
0: खैर,
1: इतना
0: मिल
1: नाम तो
0: जाएगा
1: नहीं है दीदी, आज तो
0: मिल
1: दूसरा बता
0: जाएगा।
1: दूँ,
0: हाँ दूसरा भी बता दो, वैसे ये गाना भी मिल जाएगा।
1: मिल जाएगा
0: हाँ लेकिन एक और बता दो
1: दूसरा।
0: फिर
1: फिर
0: भी।
1: वो कौन सा है, तू गैरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी।
0: ओ भगवान, कहाँ कहाँ के ढूंढ के ला रही हूँ वंदना जी ये गाने। नहीं नहीं सिंपल नहीं, आप तो बिल्कुल कठिन से कठिन दीजिए, तगड़ा होना चाहिए।
1: अभी रेडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे, पुराने पुराने, तो
0: हाँ तो
1: मुझे
0: आपने
1: तो
0: नोट
1: बहुत
0: कर लिया
1: पुराने
0: कि
1: पुराने गाने
0: आप?
1: भी बहुत पसंद है। केएल सहगल का है एक गाना,
0: हाँ,
1: रूही रूही तू मेरे सपनों की रानी।
0: ओ
1: बहुत अच्छा लगता है मुझे वो रूही। और भी
0: हाँ,
1: पुराने पुराने गाने मैंने एक दिन वो खरीद उसका कौन है वो गायिका,
0: भाई सुनो, गैरों पे तो ये वाला गाना मेरे सामने आया है, गैरों पे करम।
1: गैर पे करम नहीं, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तू औरों की क्यों हो गई।
0: किसकी आवाज में है ये भी नहीं
1: ये
0: पता।
1: वो हीरो है जॉय मुखर्जी, कौन है उनकी पिक्चर का गाना है शायद।
0: कोशिश करते
1: और
0: हैं।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, सिंपल सा बता देती हूँ, जल्दी मिल जाए। जो कौन सा बता दूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
0: देखो
1: अमिताभ
0: वैसे तो
1: बच्चन
0: आपका
1: का
0: ये
1: सुना
0: पहले गीत
1: दीजिए, फिर
0: मिल जाएगा,
1: आपको
0: जहां
1: सही
0: मैं
1: लगे।
0: जाती हूँ वहीं चले
1: वहीं
0: आते
1: चले
0: हो।
1: आते हो, चोरी चोरी दीदी, आप
0: चलो
1: तो
0: टेंशन नहीं लो,
1: मेरे
0: मिलेगा यही गाना
1: सपनों में आ
0: मिलेगा।
1: गए शॉर्टिंग के प्रोग्राम।
0: अपन ढूंढ के लाएंगे।
1: आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम देते, कल तो मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, तो कल तो मैं फोन करेंगी, कल का सुन नहीं पाई, तो मेंटेनेंस चल रहा, तो बिल्कुल मुझे बहुत लगा कि
0: तो
1: इन्वर्टर भी
0: आप है
1: बंद
0: ना,
1: हो गया था, वो
0: न्यूज
1: भी
0: ऑन
1: फ्रिज भी
0: एआर
1: गया।
0: एप्लीकेशन पर नहीं सुनते क्या मोबाइल पर?
1: मोबाइल में दीदी हम डाउनलोड कर हो ही नहीं पा रहा मेरे मोबाइल में, कैसे करते वो, मैंने कई
0: अरे
1: बार किया नहीं होता।
0: नहीं, डाउनलोड हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। और फिर उसको है ना सिलेक्ट कर लो, लाइव पर जाकर भोपाल सिलेक्ट कर लो,
1: अच्छा
0: और बहुत अच्छे से सुनाई देता है, बहुत क्लियर सुनाई देता
1: ठीक है, मैं आज ही
0: है
1: करवाती
0: ना।
1: हूँ, मैं करती हूँ। प्ले स्टोर में जाके भी किया, पर वो
0: प्ले
1: चला
0: स्टोर
1: था
0: में
1: पर
0: जाके ही
1: वो
0: करना पड़ेगा, न्यूज
1: नहीं,
0: ऑन
1: मैंने
0: ए आई
1: किया नहीं
0: आर।
1: हुआ मुझे तो
0: अच्छा
1: इतना वो है, जब एक भी अगर मिस हो गया, आज किस किस के गाने आए, बहुत उम्मीद रहती है, तो वो लगा रहता है, पता नहीं जो
0: चलो,
1: किस
0: एक बार और
1: किसी।
0: कोशिश करना, पक्का होगा। ठीक है,
1: जी नहीं, आप कर दीदी नमस्ते, और आप
0: नमस्ते।
1: पहचानने में गलती हो गई तो
0: कोई
1: सॉरी।
0: बात नहीं, कोई बात नहीं,
1: अमिता
0: ओके।
1: दीदी क्या है ना, मैं अमिता दीदी से बहुत बात करती हूँ, मतलब जितने बार भी कभी फोन लगाया अमिता दीदी और आप रहती हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हो, रेडियो इसमें मोबाइल में बहुत दबी आवाज आती है।
0: चलो कोई बात नहीं, ओके
1: ठीक है
0: ओके,
1: दीदी,
0: थैंक
1: नमस्ते,
0: यू,
1: कल
0: बाय
1: सुनेंगे आप।
0: बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसी के साथ अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में विद्यालयों महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। वन विभाग ने गुप्तचर ऐप विकसित किया है। अब स्थानीय नागरिक स्वयं को गुप्तचर के रूप में पंजीकृत कर वन संरक्षण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ईकेवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। श्रमिकों को अपनी लंबित ईकेवाईसी 1 माह के भीतर पूर्ण करनी होगी। और भोपाल में 6 और 7 जून को राज्य स्तरीय आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में प्रदेश में उत्पादित विभिन्न आम की किस्मों एवं उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है, आवाज सुमन कल्याणपुर की है, इंदिवर के बोल हैं और फिल्म का नाम है रॉयल मेल। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और इनके परिवार के सदस्य भाटापारा दत्तरेंगी से इस गीत को सुनना चाहा है। द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं रॉयल मेल फिल्म का ये गीत।

आपको सुनवा रहे हैं उत्सव फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। वसंत देव का लिखा हुआ गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शोभा शारदा दामिनी इस गीत को सुनना चाहती हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं उत्सव फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अंगूर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। गुलजार का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। ये पत्र हमें लिख भेजा है रुचि और इनके परिवार ने। रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, स्वाति, माही, छुटकी, शरद और संपूर्ण माखीजा परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं धमतरी बनियापारा से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर अंगूर फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बुढ़ा मिल गया फिल्म का वो गीत जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। संगीत आर डी बर्मन का है, गीत लिखा है मजरूह ने। पसंद आप सब श्रोताओं की। अयूब खान, इरम, गुड़िया, शोएब, नावेद और जीशान ने इस गीत को सुनना चाहा है। ये पत्र हमें मिला है करूला मुरादाबाद से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं जंतर मंतर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत है शरद मलिक का, सरदार मलिक का। पसंद आप सब श्रोताओं की। प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, इन्होंने नांदेड़ से ये गीत सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि इस गीत को सुनना चाहती हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म जंतर मंतर से।

0: अब आपको सुनवा रहे हैं द ट्रेन फिल्म का वो गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की, रुचि शुक्ला, रीना शुक्ला गीत और कृष्णा शुक्ला ने ये गीत पसंद किया है रीवा से। दिल्ली शहर से ये गीत सुनना चाहते हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए सुनते हैं द ट्रेन फिल्म का ये नगमा।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं

0: द ट्रेन फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण इस अंतराल के बाद होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिए इसकी 8वीं कड़ी।
2: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता पैसों की लालच में आकर सारे का दूसरा निकाह रसूल से करवाना चाहती है, जो औरत को पांव की जूती से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इस बात का पता चलने पर मुश्ताक को सदमा पहुंचता है और वो बीमार पड़ जाता है। अब आगे।
1: अम्मी, कुछ बात करनी है तुझसे।
2: हाँ बोल।
1: मैं जो सुन रही हूँ क्या वो सच है?
2: क्या सुन रही है तू?
1: तू मेरा दूसरा निकाह पढ़वाने की बात कर रही है?
2: हाँ सच सुना है तूने।
1: मुझसे पूछे बगैर तू मेरा निकाह तय कैसे कर सकती है अम्मी?
2: मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और मैं जो भी कर रही हूँ वो तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ।
1: अब इसमें मेरी क्या भलाई है? तू एक भलाई तो पहले ही कर चुकी।
2: बस कर, आज तक उस मुश्ताक को भूली नहीं है। कान खोल कर सुन ले, तेरा निकाह अब उसी जगह होगा जहां मैं चाहूंगी।
1: मैं ये निकाह नहीं करूंगी।

0: तेरा निकाह रसूल से ही होगा और अपने मन की कोई बात हो भी तो उसे वहीं दफन कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी।
1: मेरा निकाह मुझसे पूछे बगैर तू कैसे कर सकती है अम्मी? मैं ये निकाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
0: अरे तुझसे पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, और मैं तेरी माँ हूँ, जहाँ कहूंगी वहीं तेरा निकाह होगा।
1: लेकिन मैं उस रसूल से निकाह नहीं कर सकती।
0: क्यों, क्या कमी है उसमें?
1: तू खूब जानती है अम्मी, उस रसूल में क्या कमी है। गांव का बच्चा बच्चा जानता है नूरी के साथ क्या किया उसने। ये बात क्या छिपी है किसी से?
0: अरे जा, नूरी बदजात थी, रसूल से उल्टा जुबान लड़ाती थी। रसूल ने जो किया सही किया, औरत को अपने शौहर की बात पर ही चलना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे वही सजा मिलती है और उसका हश्र नूरी जैसा होता है। पर रसूल तुझे खुश रखेगा बेटी, उसके पास पैसा भी खूब है, मेहनत करता है, कमाता है। तुम दोनों बहुत बहुत खुश रहोगे।
1: नहीं अम्मी, पैसा कमाने से कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अम्मी, पूरे गांव में एक भी आदमी ना होगा जो रसूल के बारे में अच्छा सोचता हो, और तुम मेरा निकाह उसी के साथ पढ़वाना चाहती है?
0: अरे लोगों का क्या, लोग उसके पैसों से जलते हैं, उसकी तकदीर से जलते हैं।
1: तू अपने आप को धोखा दे रही है अम्मी, लेकिन मैं कह देती हूँ, मैं उस रसूल से कभी निकाह नहीं करूंगी।
0: बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे रसूल से निकाह करना होगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
1: मैं इस फैसले को नहीं मानती।
0: तो उस मुश्ताक की बांदी बनकर रहती, उस घर में नौकरानी बनकर रहती।
1: अम्मी,
0: भूल जा उस मुश्ताक को, अब तेरा निकाह रसूल से होगा।

सारे के लाख मना करने के बावजूद फाता उसका निकाह रसूल के साथ कर देती है। निकाह के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों में अनबन शुरू हो जाती है।

0: खाना बन गया क्या? बड़ी भूख लगी है। साराय, साराय, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे अरे, क्या सोच रही है? खाना दे।
1: हाँ, लाती हूँ।
0: और ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है तूने?
1: वो कुछ नहीं, बस।
0: कुछ नहीं? अरे तो क्या तू हंस नहीं सकती? रोनी सूरत बनाकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है।
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खाना खाओ।
0: अरे रोनी सूरत लेकर खड़ी है और मैं खाना खाऊं?
1: खाना क्यों फेंक दिया?
0: चुप कर, रहती है मेरे साथ और रोती है उस मुश्ताक को याद करके। अब अगर मेरे सामने आई तो अच्छा ना होगा। अब जा यहां से। ऐसे क्या देख रही है मुझे? चल।

0: अब्बू अब्बू, खाना खा लो, काम पर भी तो जाना है।
1: ला दो बेटा।
0: अब्बू, मायूस लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है?
1: ठीक ही हूँ बेटा, तबीयत का क्या होता है, तकदीर में जो लिखा।

0: किसी चीज की जरूरत हो उसे।
1: हाँ तुम जाओ अबू, मैं देखती हूँ।
2: साराय, साराय।
1: आती हूँ।
2: साराय, साराय।
1: कहा ना आती हूँ, फिर शोर क्यों मचा रहे हो?
2: क्या कर रही थी?
1: अब्बू को खाना खिला रही थी।
2: जब मैं आया तो पहले मेरे पास आना चाहिए था, तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं है।
1: चाय लाऊं?
2: रहने दे, मेरे आते ही तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज जाते हैं? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वास्ता पड़ा था तुझसे। अरे अब कहाँ जा रही है?
1: रसोई में।
2: चुपचाप यहीं खड़ी रह, समझी?
1: तुम हमेशा मुझसे इसी तरह क्यों बोलते हो?
2: तो चूमो तुझे? अरे सूरत तो ऐसे बनाए रहती है जैसे मैं मर गया हूं। अरे जा जा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, जा उसी के पास जा जिसने तुझे थूक दिया है।
1: रसूल, अपने दिमाग की गंदगी अपने पास रखा करो।
2: अभी बताता हूँ तुझे।
1: रसूल।

0: चाय।
1: रहने दो बेटी, मन नहीं है।
0: अरे चाय पी लो।
1: अरे कहा ना रहने दो।
0: क्या हुआ, चाय क्यों नहीं पी रहे?
1: मन नहीं है।
0: अब मन नहीं है या और कोई बात है?
1: कोई बात हो भी तो तुम्हें क्या, तुम अपना काम तो कर ही रही हो।
0: तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
1: मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो, पर तुम जानना नहीं चाहती।
0: अरे तुम बेकार की बातें सोचकर अपना मन खराब कर रहे हो। मेरी मानो तो जैसा चल रहा है चलने दो।
1: अरे सारे को देखो।
0: क्या हुआ है सारे को, अच्छी भली तो है।
1: तुम माँ हो उसकी या?
0: चुप करो, कभी तो मुबारक शब्द बोलो।
1: सारे के साथ रसूल कैसा बर्ताव करता है जानती हो?
0: अरे रसूल ठीक है, सारे ही उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती तो ऐसा होगा ही।
1: वादा, तूने पैसों के लालच में आकर ऐसा किया है, और अब रसूल के चंद पैसों ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जो तुम अपनी बेटी के दुख को नहीं देख पा रही हो। तुमने माँ होकर सारे को एक जानवर के हाथ में दे दिया है, जो हर बार उस पर जुल्म करता है, मारता पीटता है, और सारे पल पल घुटती है।
0: अजी हटो भी, अब रहने भी दो। रसूल इतना बुरा नहीं, सारे अगर दो अच्छे बोल बोल लेगी तो जुबान नहीं कट जाएगी उसकी। हमेशा रोनी सूरत लेकर जाती है उसके पास, तो क्या बुरा करता है वो? अरे औरत उसी का प्यार पाती है जिसका मर्द उससे प्यार करे, पर सारे की ऐसी सूरत देखकर किसे प्यार आएगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं?
1: इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुमने अगर सारे का निकाह रसूल से ना किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता।
0: अरे जाने दो, मैंने सारे की खुशी के लिए किया है ये सब।
1: तुम माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।

0: होती तो सारे का दुख देखती। मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता।
1: हाँ हाँ, अगर नहीं देख सकते तो सारे को समझाओ कि वो रसूल से अच्छा बर्ताव करे, और नहीं तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो।
0: मैं जा रहा हूँ, पुरानी कोठी में रह लूंगा, पर यहाँ रहकर सारे का दुख नहीं देख पाऊंगा।
1: ठीक है, जाओ बड़े आए प्यार जताने वाले। अरे जितना पैसा रसूल देता है हमें उसका एहसान मानना चाहिए।

0: अब्बू।
1: कौन? सारे?
0: हाँ।
1: आ गई बेटी।
0: खाना खा लो अब्बू।
1: रख दे बेटा।
0: अब्बू एक बात पूछूं?
1: हाँ?
0: सच सच बताएंगे?
1: पूछो बेटी, क्या बात है?
0: अब्बू सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा दूसरा निकाह क्यों किया?
1: ये सवाल मुझसे ना पूछा कर बेटी।
0: क्यों ना पूछूं अब्बू?
1: मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा।
0: मैं एक लड़की हूं, इसीलिए ना आप पर बोझ बन गई थी। ऐसा ही था ना अब्बू?
1: नहीं,
0: लड़की सिर्फ जुल्म सहने के लिए होती है क्या? क्या लड़की की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? वो अपनी खुशियों को अपने तरीके से नहीं पा सकती, वो खुलकर हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों घोटती रहती है, बस पिसती रहती है, महज देह बनकर। आपने सब जानते हुए भी आप चुप रहे, मेरी बर्बादी देखते रहे आप। क्यों अब्बू, क्यों क्यों होने दिया आपने मेरा दूसरा निकाह उस रसूल के साथ? क्यों अब्बू, क्यों?
1: बेटा मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस इतना जान ले कि तू अपनी अम्मी की नाजायज इच्छाओं की बलि वेदी पर चढ़ी है। वो चाहती है कि उसका जमाई उसे खूब पैसा दे। रसूल तेरी माँ को पैसा देता है और यही वजह है कि वो तुम पर होने वाले जुल्मों को अनदेखा करती है। पैसे के लालच ने उसे माँ से शैतान बना दिया है बेटी।
0: आपने कुछ क्यों नहीं किया अब्बू?
1: मैं मजबूर हूँ बेटी। तू जा, घर जा बेटी।
0: अब्बू आप रो रहे हैं। अब्बू
1: नहीं बेटी, रो नहीं रहा हूँ, अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ।
0: अब्बू
1: तू जा बेटे, तुझे देर हो रही है। ये तूने क्या किया इस फूल सी

0: कुछ समय बाद मुश्ताक के बीमार होने की खबर सुनकर हसन भट्ट उससे मिलने जाता है।
1: अरे फजी, जरा देखना तो कौन है।

0: अरे हसन भाईजान, आप सलाम,
1: वालेकुम सलाम।
0: आइए अंदर आइए।
1: क्या करीम भाईजान घर पे नहीं है?
2: अरे अरे हसन भट्ट, अस्सलाम वालेकुम, आइए
1: वालेकुम
2: आइए
1: सलाम।
2: आइए आइए, बैठे बैठे। अरे भाई फजीब, जरा दो कप चाय तो बनाओ।
0: जी
1: सब ठीक तो है ना?
2: बस सब ठीक है। कैसे हो सन भट्ट? फाता कैसी है? और सारे
1: सब ठीक है।
2: आपके चेहरे पर मायूसी दिख रही है।
1: पहले ये बताइए, मुश्ताक कैसा है? सुना है उसकी तबीयत खराब है, सो मिलने आ गया।
2: ओ, बस क्या बताऊं, दवा असर ही नहीं कर रही है, दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है।
1: किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते?
2: हाँ बस वो इंतजाम में लगा हूँ, कुछ पैसे हाथ आ जाएं तो दिखाऊंगा। मुश्ताक के बीमार हो जाने से भाई घर की माली हालत गड़बड़ा गई है।
1: करीम भाई, आप पैसों की चिंता ना करें, हम मदद करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ। उनका बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मुश्ताक जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
2: अरे नहीं नहीं हसन भट्ट, आप तकलीफ ना करें।
1: तकलीफ कैसी? मुश्ताक के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है, मुझे ना रोके।
2: अब जैसा आप बेहतर समझें।

0: अरे करीम भाई, ये है डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: आइए डॉक्टर साहब, मुश्ताक उस कमरे में।
2: जी अच्छा,
0: आइए।

0: मैंने मुश्ताक को देख लिया है
1: जी।
0: मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, अल्लाह ने चाहो तो मुश्ताक एक सप्ताह में दौड़ने लगेंगे।
1: आमीन। डॉक्टर साहब आपकी फीस
0: आप फिक्र ना करें, असाइनमेंट ने फीस पहले ही दे दी है, आप दवा मंगवा कर समय से दवा दें। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरत लगे तो मुझे बुलवा भी लीजिए।
1: जी
2: अच्छा डॉक्टर
1: जैसा आप बेहतर समझें।
2: ये दवा ले, समय पर दवा देते रहिएगा, मुश्ताक जल्द ठीक हो जाएगा।
1: हसन भट्ट आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, मेरे समझ में नहीं आता।
2: अरे ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा करीम भाई अब मैं चलूंगा।
1: खुदा हाफिज।
2: खुदा हाफिज।
3: कौन?
0: मैं मुश्ताक।
3: मुश्ताक मुश्ताक आप
0: सारे तुम अब्बू कहाँ हैं?
3: अब्बू बाहर गए हैं, आते ही होंगे, आओ बैठो।
0: कुछ बोलो सारे, नई जिंदगी कैसी चल रही है?
3: बेहतर है।
0: सारे एक बात पूछूं, सच बताओगी?
3: पूछो।
0: तुम मुझसे तलाक लेकर खुश हो? अगर ऐसा है तो मुझे किसी से कोई शिकायत ना होगी।

0: तुमने मुझसे दगा किया है मुश्ताक, प्यार का ढोंग रचते रहे हो, इंतजार भी ना कर सके और तलाकनामा भेज दिया।
1: सारे मेरे प्यार पर तोहमत ना लगाओ, तुमने तलाकनामा भेजा और मैंने तो सिर्फ तुम्हारी रजा मानकर उस पर दस्तखत किए हैं।
0: क्यों झूठ बोलते हो मुश्ताक, अपने गुनाह को मेरे सर क्यों मर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करती भला? मैं तुमसे तहे दिल से मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूँ।
1: सारे अगर तुमने तलाकनामा नहीं भेजा तो फिर हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ सारे कोई है जिसने हमारे बीच ये दूरियां पैदा की है।
0: पर ऐसा कौन हो सकता है?
1: अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर तुम्हारी अम्मी ही ऐसा कर सकती है।
0: क्या?
1: हाँ, जैसा लोगों ने मुझे बताया है कि रसूल के पैसों की वजह से तुम्हारी अम्मी ने पहले हमें तलाक दिलवाया और फिर तुम्हारा निकाह रसूल से कर दिया।
0: इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है मुश्ताक। मेरा दिल कहता था मुश्ताक कि मेरा मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ मुश्ताक, आज भी।
1: लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता सारे, तुम्हारा दूसरा निकाह हो चुका है। तुम खुश रहो, अब यही दुआ करूंगा कि मेरा प्यार जहां भी रहे सलामत रहे।
0: मुश्ताक, अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ कि रसूल के साथ सिर्फ मेरा शरीर रह सकता है, तुम्हारी सारे नहीं मुश्ताक।
1: तो क्या तुम रसूल के साथ खुश नहीं हो?
0: मैं कैसे खुश हूँ ये देखना चाहते हो? ये देखो ये निशान उस रसूल के दिए हैं, यही है उसका प्यार।
1: सारे
0: नहीं देख सकते ना, ये तो तन पर पड़े ऐसे जख्म है मुश्ताक।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां का 8वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
3: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पूर्व जज गिरिवाला सिंह और उनके बेटे समर सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया और मौसम विभाग के अनुसार टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दिन का एक बजा है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।
1: सखियों, स्वागत है आपका महिला सभा कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए स्मृति तिवारी का नमस्कार। सखियों, हम सभी देख रहे हैं दुनिया भर में ईंधन का संकट बढ़ रहा है। इसके लिए सभी देश प्रयास कर रहे हैं। हम सभी अपनी तरफ से प्रयास करें तो ईंधन की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। सखियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए ईंधन की खपत कम करने के लिए कहा है। हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या कार पूलिंग करें, पेट्रोल डीजल वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। आसपास के कार्यों के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी दूर के लिए इसका उपयोग करने से हम ट्रैफिक जाम से आसानी से बच सकते हैं। सखियों, साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती है। ये एक तरह की एरोबिक एक्सरसाइज है जिसे शरीर को चुस्त रखने के लिए और मसल्स को टोन करने के लिए भी चलाया जाता है। और अगर हम रोजाना 20-30 मिनट साइकिलिंग करें तो शरीर जो है हमारा शेप में रहता है। सखियों, हम कह सकते हैं साइकिल एक साधारण सवारी नहीं बल्कि सेहत और स्फूर्ति का खजाना है और इसके उपयोग से हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। सेहत पर साइकिल चलाने के फायदों को ध्यान में रखकर ही हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के लिए साइकिल के फायदे उजागर करना और सेहत के प्रति साइकिल चलाने के फायदों से लोगों को अवगत कराने जैसे कारणों को ध्यान में रखकर ये दिवस मनाया जाता है। सखियों, ये दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। साइकिल चलाने से वायु प्रदूषण कम होता है और इसे चलाने के लिए पेट्रोल या CNG किसी ईंधन की जरूरत नहीं होती है। सखियों, साइकिलिंग हर उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन गतिविधि है। सखियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट साइकिल चलाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे रक्त संचार अच्छा व शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। साइकिलिंग करने से कैलोरी बर्न होती है, शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। सखियों, पैडल चलाने से शरीर में एंड्रोफिन निकलता है जिससे मानसिक शांति मिलती है। साथ ही ये परिवहन का सबसे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल साधन है। सखियों, आप भी साइकिलिंग करें लेकिन सुबह के समय। इस समय हीट वेव चल रही है इसलिए दोपहर और शाम के समय बिल्कुल भी साइकिल न चलाएं। सखियों, साइकिल के हर पैडल के साथ एक नया सफर शुरू होता है जो हमें सिखाता है जीवन भर स्वस्थ रहना। जीवन के सफर में जब हम सफर साथ हो तो हर लम्हा खुशनुमा हो जाता है, मंजिलें आसान हो जाती हैं और रास्ते यूं ही कट जाते हैं।

0: सखियों, कुछ समय पहले हम आपसे बात कर रहे थे सेहत को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए साइकिलिंग करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तन के साथ मन भी खुश रहे। इसके लिए जरूरी होता है हम अच्छा साहित्य और किताबें पढ़ें। इससे हमारे अंदर नए विचार आते हैं। साथ ही अलग अलग परिस्थिति और घटनाओं को जब हम देखते हैं तो मन में कई तरह के भाव आते हैं। इन भावों में शब्दों का संयोजन करके लय के साथ हम कविता और काव्य पाठ के रूप में व्यक्त करते हैं। सखियों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य पाठ। कवित्री हैं ज्योति दोहरे।
1: सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। एक मुक्तक से सभी श्रोताओं से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। चूंकि मैं कर्म को विशेष महत्व देती हूँ, मैं मानती हूँ कि कर्म की प्रधानता हमारे जीवन में सबसे विशेष होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ सुनिएगा। नशा मेहनत का जो करते सबर से काम लेते हैं, नशा मेहनत का जो करते सबर

करते न किस्मत नाम लेते हैं। मित्रों, हर किसी के आगे हमें झुकना भी नहीं चाहिए, हमें कैसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए, एक मुक्तक के माध्यम से आपको बताती हूँ, सुनिएगा। कि पथिक बन कर चले करने सभी की रहनुमाई को, न बांटे इस धरा को और गगन की उस ऊंचाई को। पथिक बन कर चले करने सभी की रहनुमाई को, न बांटे इस धरा को और गगन की उस ऊंचाई।

ई को और चार पंक्तियां और रखती हूं कि करना हो फतेह हिमालय तो छोटी घाटियां चढ़ने से क्या होगा। कि करना हो फतेह हिमालय तो छोटी घाटियां चढ़ने से क्या होगा, और बनना हो जो सूत्रधार तो एक दो किताबें पढ़ने से क्या होगा। जानना चाहते हो समुद्र की गहराई तो उसकी तह तक जाओ। कि जानना चाहते हो समुद्र की गहराई तो उसकी तह तक जाओ। यूं छोटे तालाबों में मछलियां पकड़ने से क्या होगा, यूं छोटे तालाबों में मछलियां पकड़ने से क्या होगा। बेटियां चांद तक पहुंच गई फिर भी उन्हें आज कम आंका जाता है, और एक बेटी होने के नाते देश की सभी बेटियों को एक छंद अपना घनाक्षरी, मेरा सर्वप्रिय छंद, मैं उसको सभी को भेज रही हूं, सभी का आशीष मिले। सुनिएगा कि

हैं नशे को बंद करने के ऊपर, नशा मुक्ति के ऊपर एक छंद आप सभी को भेज रही हूँ, सप्रेम भेंट कर रही हूँ, सुनिएगा। चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत यहाँ, राष्ट्र को संजोने वाले छंद होने चाहिए। के चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत यहाँ, राष्ट्र को संजोने वाले छंद होने चाहिए। दबे ना गरीबी यहाँ जीवन के बोझ तले।

होने चाहिए। हमारी कवियों की कलम बहुत कुछ लिखती है, लेकिन जब एक देश प्रेम की कवयित्री कुछ लिखने का प्रयास करती है तो सबसे पहले उसे सीमा पर जो सैनिक हैं उनकी माँ याद आती हैं, क्योंकि उनकी अगर माँ ना हो तो वो सीमा पर सैनिक हमारे ना खड़े हों और हमारे देश की रखवाली ना कर रहे हों। तो सैनिकों की माँओं के ऊपर समर्पित मेरा एक घनाक्षरी आप सभी को भेंट कर रही हूँ, सुनिएगा।

और जाए हैं जिन माओ ने तमाम वीर कोख से, कि जाए हैं जिन माओ ने तमाम वीर कोख से, ऐसी ही माओ पे हर बार लिखे लेखनी, ऐसी ही माओ पे हर बार लिखे लेखनी। और एक छंद में और आप सभी को भेज रही हूं, सुनिएगा। कि जागी नहीं युवा पीढ़ी सोई रही प्रेम में, कि जागी नहीं युवा पीढ़ी सोई रही प्रेम में, चीखती पुकार यहाँ सुन कौन पाएगा, कि बिन बाजे शंख यहाँ सभ्यता व एकता के, कि बिन बाजे शंख यहाँ सभ्यता व एकता के, अखंडता के स्वप्न यहाँ बुन कौन पाएगा।

0: राष्ट्रभक्ति भाव बिना देश का भविष्य यहाँ चुन कौन पाएगा, और कैसे करें सारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण अब, कि कैसे करें सारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण अब, जाने बिना देश यहाँ गुण कौन पाएगा, जाने बिना देश यहाँ गुण कौन पाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपका रस परिवर्तन करती हूँ और आपको एक गजल के एक मतले और एक शेर से जोड़ती हूँ कि गरीबों की बस्ती में, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, गुलों के जिस्म पर नाखूनों के ये निशान किसके हैं, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, गुलों के जिस्म पर नाखूनों के ये निशान किसके हैं, और मचा है तंग गलियों में अचानक शोरगुल कैसा, कि मचा है तंग गलियों में अचानक शोरगुल कैसा, ये किसके घर पर आए नए मेहमान किसके हैं, ये किसके घर पर आए नए मेहमान किसके हैं। और एक शेर आप सभी के बीच पेश करती हूँ कि सभी लोगों ने अपनी बोलियां आकर लगाई हैं, कि सभी लोगों ने अपनी बोलियां आकर लगाई हैं, हमें मालूम है बिकते यहाँ ईमान किसके हैं। और एक शेर देखिएगा कि अदालत फैसला देने से पहले देख ले थोड़ा, कि अदालत फैसला देने से पहले देख ले थोड़ा, मेरे बारे में झूठे दे रखे बयान किसके हैं। और मक्ता पेश करती हूँ, यहाँ बाजार में ज्योति हर एक सामान बिकता है, यहाँ बाजार में ज्योति हर एक सामान बिकता है, दुकानों पर सजा रखे ये अरमान किसके हैं, दुकानों पर सजा रखे ये अरमान किसके हैं।
1: सखियों, अभी आपने ज्योति दोहरे से काव्य पाठ सुना। सखियों, समर वेकेशंस चल रहे हैं और हम बच्चों को नई नई एक्टिविटी से जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो। हम देखते हैं जब भी बच्चों को अपने मन के अनुसार कुछ करना होता है तो वे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, तो कभी टीवी पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम को लंबे समय तक देखने में अपना समय बिताते हैं। लगातार स्क्रीन से जुड़े रहने से वे ओवर एक्टिव होने लगते हैं, उनका ध्यान भटकने लगता है। सखियों, उनकी परिवर्तनशील भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि उन्हें योग से जोड़ें। बच्चों में योग के प्रति रुचि जागृत करें, उन्हें योग करने के लिए प्रेरित करें। सखियों, बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं, उनके साथ खुद भी योगा करें। एक शांत और सुरक्षित योगा स्पेस बनाएं, घर में एक आरामदायक जगह चुनें, गैजेट्स को वहां से दूर रखें और उनके साथ अभ्यास करें। सखियों, जब वे हमें करते देखेंगे तो वे स्वयं जुड़ना चाहेंगे। खेल खेल में 10-15 मिनट का अभ्यास कराते हुए योगासन को उनकी आदत में शामिल करें, साथ ही योग के प्रति उत्साहित करें। योग के आसनों को

जानवरों या प्रकृति के नाम से जुड़कर मजेदार बनाएं। ताड़ासन, वृक्षासन, तितलियासन, भुजंगासन, सिंहासन कराएं। सखियों, इन योगासनों को करने से शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, मांसपेशियों और जोड़ों का व्यायाम होता है और इससे उनका संतुलन और एरोबिक क्षमता भी बेहतर होती है। सखियों, जब बच्चे सही आसन में बैठना सीखते हैं ना, तो वे अपने शरीर के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। उनके जीवन में स्वस्थ शारीरिक आदतें शामिल होने लगती हैं। योग में गहरी सांस लेने की प्रक्रिया बच्चों को एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने और उनके मन को शांत करने में मदद करती है। सखियों, योग करते समय बच्चे शरीर पर संतुलन बनाना सीखते हैं, नए आसन सीखते हैं तो उन्हें उपलब्धि का एहसास होता है, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास आता है, अनुशासन में रहना सीखते हैं। उन्हें समझाएं कि योग दिनचर्या का सहज हिस्सा है, उसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और इससे याददाश्त यानी कि मेमोरी भी तेज होती है, पढ़ाई में मन अधिक लगता है और बच्चों की रचनात्मकता भी बढ़ती है। सखियों, हम बच्चों के सुबह के व्यायाम और सोने से पहले की दिनचर्या में सरल योगासन को शामिल कर सकते हैं। बच्चों के साथ समय बिताने से हमारी देखिए बॉन्डिंग है ना, वो और भी मजबूत होगी। वे अपनी बातों को आपसे और अधिक शेयर करेंगे और बच्चे आपके और भी करीब आ जाएंगे।

सखियो, हम सभी देख रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ रही है। हीट वेव को हम सभी महसूस कर रहे हैं और इनसे बचने के लिए हम एनर्जी ड्रिंक, शिकंजी, आम पना, मठा, छाछ, सत्तू का शरबत को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। ये पेट को ठंडा रखते हैं, साथ ही एनर्जी लेवल भी बढ़ाते हैं। साथ ही ठंडी ठंडी लस्सी, मैंगो शेक का हम सब आनंद ले रहे हैं। सखियो, इस समय आम तो हर तरफ देखने को मिल रहा है। आम से बने व्यंजन का स्वाद हमें अलग ही सुख देता है। सखियो, आम रस आम के गूदे से बना स्वादिष्ट और ताजा पेय है, जो अपनी प्राकृतिक मिठास और ठंडक के लिए जाना जाता है। सखियो, इस मौसम में इसके सेवन से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, साथ ही ये पाचन को सुधारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सखियो, आम रस का प्रयोग कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है, साथ ही आइसक्रीम, केक में भी आम रस का उपयोग होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आम रस के बहुत लाभ होते हैं, जो गर्मियों में थकान को मिटाकर शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। सखियो, आम रस विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये विटामिन ए से भरपूर होता है, जो आँखों की रोशनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आम रस पाचन में सहायक होता है और इसमें फाइबर की मात्रा होती है, जो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार है। सखियो, आम रस में कैलोरी और अधिक होती है। जिसका वजन बढ़ा हुआ है या मधुमेह रोगी है, डायबिटिक पेशेंट है, वो इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। सखियो, आप भी घर में आम लाएं, आम रस बनाएं, पूरे परिवार के साथ इसका लुफ्त और आनंद उठाएं, लेकिन गर्मी को ध्यान में रखते हुए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर से जब भी बाहर निकलें अपने शरीर को कवर करके निकलें और साथ ही पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें। और अब समय कह रहा है हमें चलने के लिए, तो कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी सखी स्मृति तिवारी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं लोक भजन के साथ। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुति है आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात। 1936
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: स्वाति पाराशर के गए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज की ये प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म मौसम का ये गीत था। डर फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है। शिवहरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा है।

0: लता मंगेशकर और ए हरिहरन का गाया ये डर फिल्म का गीत था। शिव हरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा था। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अभी भी कई जनजातीय वर्गों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी पहले ही प्राप्त कर ली है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अब सड़क निर्माण को सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखेगा। इसी सोच के साथ मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 1 और 2 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के अध्ययन दौरे पर गया। वहां टीम ने महाराष्ट्र के वित्तीय मॉडल, डिजिटल गवर्नेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को समझा। अब इसी तर्ज पर प्रदेश में 1 रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाएगा ताकि निर्माण स्थल पर कोई घटना होने पर मिनटों में कार्रवाई हो सके। खंडवा जिले ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में देश भर में 5वां और अपने जोन में 2रा स्थान हासिल किया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें सोकपिट, रिचार्ज पिट, बोरी बंधान और कंटूर ट्रेंच जैसी संरचनाएं शामिल हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा समेत कई जिलों में इस दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विकासखंडों में पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम मध्य रेलवे भी 15 मई से 15 जून तक जबलपुर मंडल में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहा है। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। ये महोत्सव संग्रहालय की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के जनजातीय नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 6 जून की शाम 6:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। और अब बात मौसम की। इस बार नौतपा में गर्मी की जगह आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने डेरा जमाए रखा। बारिश और तेज हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया और कहीं भी हीट वेव नहीं बनी। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच कलेक्टर ने अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बारिश के पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद द्वारा 3,27,00,000 रुपए की लागत से नगर में आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। शिवपुरी में प्रतिबंधित और नियंत्रित श्रेणी की भूमियों के अवैध हस्तांतरण, पंजीयन, नामांकन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिले के सभी उपपंजीयकों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
4: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं।

0: ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम में पहला गीत प्यार का मौसम फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में मजरू के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत सुनना पसंद किया है। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम ने, गोला बाजार भक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, रामजी आर्य ने, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक ने, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनना पसंद किया है बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वाकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजिदा रानी और हिना कौसर ने।

कॉम्प्लेक्स, नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राजी राशि रक्षित चितरंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती, रेखा ऋतिक ऋचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सदस्य, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। सुनना चाहा है अभिजीत और साथियों का गाया ये दिल लगी फिल्म का गीत। समीर ने गीत लिखा है, स्वरबद्ध किया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

मैंडी शर्मा, सौरभ शाइना और निवान शर्मा ने, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने, मगरलोड धमतरी से पुन्नू राम साहू।

ये दिल आशिकाना फिल्म का टाइटल ट्रैक है, कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर ने लिखा है गीत।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं स्टोर रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की पसंद है। और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। सुनना पसंद किया है, स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये टाइटल, स्वीकार किया मैंने फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। निदा फाजली ने लिखा, उषा खन्ना की धुन।

कार्यक्रम में अगला गीत गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने सुनना पसंद किया है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने पसंद किया है। ग्राम महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की पसंद है शक्ति फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म शक्ति के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजाति विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजाति समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रदेश में राज्यसभा के 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी, 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। CBSE ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था और 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अज़रबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांधिकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा शाम 6 बजे। रात्रि 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। चर्चा का विषय है कार्यक्रम रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे नाटक सुनेगा अशोक वन का पेड़, लेखक जगदीश अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता भी जगदीश अधिकारी होंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनिएगा रमेश प्रेम का विचित्र वीणा पर बजाया राग बिहाग। शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा।

ये थी जानकारी आकाशवाणी के सांध्यकालीन सभा के प्रसारण की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथी वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5 बजे मीडियम वेव पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी है।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
2: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो वो सजावट देख कर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक महक है
1: वो आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
2: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले
1: हैं। तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
2: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता। और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है? जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
1: विश्वास हो, सम्मान हो।
2: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती है और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
1: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
2: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
2: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायने रखती थी उस जमाने में, है ना।
2: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं
2: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को कार को लेके जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
2: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं। ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है, अरबी
1: है,
2: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या है कि बनाएं क्या।
1: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना,

0: हमारी सखियों के वो मुंह
1: जी।
0: फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूं।
1: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन, और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी,
0: अरे सारा मत बताओ।
1: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तब तक ये गीत सुन लेते हैं सखियों के
0: बिल्कुल
1: साथ।
0: सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए, और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए।
1: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब
1: भाई।
0: हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है,
0: बिल्कुल सही
1: और ये
0: कहा,
1: उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात
1: बिल्कुल
0: को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में ही लगे रहते
0: हाँ
1: हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं
0: बिल्कुल
1: मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जो इस बात को समझ आते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं, और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल, और
1: हाँ
0: इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता। और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है। और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये
1: जी
0: हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेमपूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल, और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी
0: सहायक
1: बहुत मदद
0: होते
1: होता
0: हैं,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते
1: जी
0: हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो हैं, कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं, ये हमें हम
1: बिल्कुल
0: कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल, हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भाई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यावसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल, कि रिश्ते जो हैं जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
1: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना वगैरह भी कहते हैं।
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं चंचल, कि रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता।
1: जी
0: रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं। उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो
1: जी
0: ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर
0: कर लिया
1: लिया जाए
0: जाए।
1: तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती, या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्म पत्नी है, और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूँ, और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी, और

0: जीवन का वो आधार है।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्मपत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहाँ एक ओर अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
1: बिल्कुल
0: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे, लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था, जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने, जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते, तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
1: बच्चों को दें,
0: जी
1: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना।
0: जी
1: ये तो है ही कि टिट फॉर टैट होता ही है। अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है, तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि
0: जी
1: उन्होंने जो देखा है, वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर, वही तो
0: हाँ
1: उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए
0: जी
1: हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है, बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथ ही कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है, तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
0: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए, तो समझिए कि जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे, तो किसी भी ज़रूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे एक छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं, और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का कोई जब मौका मिलता है, तो उसे महिलाएं खास तौर पे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: पहनावा। और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घर चोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल
1: जी
0: कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घट चोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर
0: घर
1: जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक,
0: पोशाक।
1: और
0: हाँ
1: दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: प्रवेश
1: करती।
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम
0: बिल्कुल
1: जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है। और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहन कर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते हैं,
1: साइड में रख लेते हैं वो
0: जी।
1: भी, हाँ।
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया ना चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर। और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है, तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है। और ये पहले कपास से बनी होती थी, लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों के जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती हैं। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न, और ये साड़ियाँ पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खासतौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो घटचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है। और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घटचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है। इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत
1: महत्व होता है। बिल्कुल, और घटचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं। ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की। कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कह रहे
1: कहेंगे
0: हैं।
1: बिल्कुल ही, इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है
1: याद, हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें
0: जी।
1: पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं, और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात, और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी, और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, और पर्यावरण के नज़रिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल सही बात, और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और
1: बिल्कुल
0: इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था, और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है
1: तो
0: तो
1: उसे
0: जरूर
1: पढ़नी
0: पढ़िए
1: चाहिए,
0: जी।
1: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखती है कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुक धुक की थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा, तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे,
1: बिल्कुल
0: सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे।
1: बिल्कुल
0: आगे उन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी, तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल
1: साल निकाल
0: निकाल
1: लिए, कितनी
0: दिए
1: अच्छी बात है। और
0: जी।
1: वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर
0: जी
1: बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। और आज दो दो दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और भाई ये गाना नहीं सुना कि गाना कोई दूसरा सुनवा
1: हाँ
0: देंगे, गाने
1: हाँ
0: सभी अच्छे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो, मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना

0: आता है वो उसके लिए तैयार रहना
1: एक
0: चाहिए।
1: और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन लें,
0: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया
1: तो
0: है
1: पढ़िए
0: कि
1: ना।
0: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर
1: हाँ
0: जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
1: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है
0: हाँ
1: कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इसलिए
1: और
0: उन्हें साइकिल दे दी जाती थी। लेकिन
1: दोपहिया
0: आज
1: वाहन या
0: उल्टा है।
1: मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था
0: हाँ
1: तब।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता
1: जी
0: पिता भी, और उन्हें यहाँ तक कि चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द हैं इसमें। इसके जो अन्य शब्द हैं, योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या
0: या
1: फिर
0: रणनीति,
1: रणनीति।
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें
1: जी
0: भविष्य के

0: टिश्यू को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम हैं या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, किसके द्वारा किया जाएगा और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसा हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: और चंचल, हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो
1: और वो इसलिए
0: हमारे
1: होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
0: खिला दी
1: उन
0: जाए किसी
1: हाँ
0: भी तरह से,
1: ताकि उनका पोषण मिले।
0: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
1: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
0: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने ये सब्जी खाई भी है।
1: जी
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ चीले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसें पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते
1: क्या बात है।
0: हैं।
1: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो चंचल, रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम
1: जी
0: यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि
1: जी
0: वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है।
1: जी तो
0: तो कार्यक्रम
1: चलिए,
0: समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी
1: और
0: और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने

0: पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं हैं, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफ़ी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहाँ पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाक भी यू नो इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ. ठीक है, नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.

0: भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना। तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज़ अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती, ये नदियाँ
0: और विविध
1: और तो
0: भारती और अलिया वर्जंग।
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज़ हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार या फॉलोअप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्त्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफ़ी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी hearing impairment है उनको है, एंड गैलोडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट टाइमली और अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
0: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
1: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके, सो अगर ये तीन चीज़ आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके, एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत ज़रूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो

0: आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूँ तो आप जोर से आवाज़ बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देर इज़ नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज़ आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहाँ से आवाज़ आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहाँ पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है तो दीज आर सर्टन साइंस जहाँ पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन, घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देर इज अ डोर बेल, तो इन्वायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा ज़ोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट वेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं। तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉकलियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज़ पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है, अगर छोटी
0: हाँ
1: मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास,
1: तुम रहती हो
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी।
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा, वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा, भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा, वाचा और संप्रेषण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजन मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं,
0: जी
1: पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग। एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफ़ी अलग हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं।
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट हाँ,
0: तो उनके लिए भी आप
1: उनके
0: किसी
1: लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज़ एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू ऐड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके। तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफ़ी
0: आसानी
1: आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के वो समझता होगा, तो उसमें काफ़ी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें। क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल हैं, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं तो कहूँगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस, इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफ़ी अलग होता है। तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज़ इज़ जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
0: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
1: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंड सेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी री इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इशूज़ और कंसर्नस नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्नस आएंगे ही आएंगे। इट कैन भी उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज़्यादा देखा है मैंने, वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहाँ पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहाँ से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा

0: अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है ओके बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स ऑल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं। इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, तो यस आई वे माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स ऑल्सो।
1: बिल्कुल
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स हैं ना हम सबके, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स। ओके आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विथ योर स्पीच। ओके तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता
1: फील
0: है।
1: होता
0: तो
1: है।
0: बिहेवियर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स। ओके तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड।
1: बिल्कुल सही बात है। इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता-पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली। एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं। दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं, या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है। ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो ज़रूरत है या लर्निंग नीड्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की ज़रूरत है। ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फ़र्क है। मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा, और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज़ कौन सी है, इस आवाज़ का मतलब क्या है, आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ओके एंड अ टीडियस प्रोसेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है। तो ये एक लर्निंग नीड है, जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा, हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा, एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूसली पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज़्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज़ अफेक्टेड। सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ, एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है। मैं जितना ज़्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी। नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा ओके पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा ओके टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में। नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्प

0: ना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी सारी अलग अलग चीज़ें खोलते हैं। ओके, क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है। ओके, बुक इस तरीके से खुलती है। ओके, अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है, तो दैट क्रिया इज़ डिफरेंट, ओके, दैट प्रोसेस इज़ डिफरेंट। तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है। नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं, कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है। और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं, तो रट्टा मारा हुआ चीज़ लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर, तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, कि जितना ज़्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज़्यादा आप अच्छा प्रोग्रेस होगा। तो
1: अभ्यास
0: हाँ,
1: होगा।
0: जितना ज़्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊँ रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊँ, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं, तो वो जो
1: बिल्कुल।
0: विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड। ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि हाँ, जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है। जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो
1: बिल्कुल
0: दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड।
1: जी। तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में कुछ भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में, कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से, और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं। अमूमन होता होगा कि
0: राइट
1: उनके
0: राइट राइट राइट
1: पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ, थिंकिंग प्रोसेस है, क्या बराबर होती है या कम होती
0: सी,
1: है?
0: आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो, तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है,
1: हाँ।
0: राइट? एंड उसके अंदर एक और चीज़ आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए, जो है भाषा। ओके, कोई भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज़ गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके, एंड देन इट इज़ लाइव ब्रॉडकास्टिंग। एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज, ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैं
1: बिल्कुल।
0: ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज़ होते हैं। नहीं, दे आर नो कॉग्निटिव इशूज़, नो अंडरलाइंग इशूज़ एज सच, बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। तो वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। बट अगेन सेम थिंग बॉइल्स डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है, तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं, या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं, या क्या कैसे करूंगी, वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे, या मुझे उस चीज़ का संदर्भ ही नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूँ। वैसे
1: बिल्कुल। यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ऐ दिल है मुश्किल।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना, यहाँ ये जी सुनते हैं ये गाना। ऐ दिल

0: डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज़ मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीज़ें आपके पास एक्सेसिबल हैं तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज़ को पार्टिसिपेट करूँ तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज़ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज़ मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज language...

श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजना चाहते हैं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। प्रारंभ में आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 5 जून से सी फूड निर्यात पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं को और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक काल अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। राज्यपाल आज हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव पुरखों को प्रणाम पोस्टर प्रदर्शनी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्यवाही पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देशभर के आदिवासी नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और वंश देशज व्यंजनों की

भरमार रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान ग्वालियर केंद्र का है।

नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं साथियों कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। कार्यक्रम युववाणी में साथियों एक बार फिर आपकी दोस्त उमा आप सभी का स्वागत करती है। साथियों, गर्मियों का आगाज हो चुका है। मई जून की इस भयंकर गर्मी में लोग अक्सर धूप और तेज गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं। खासकर इस मौसम में जब लोग ठंडा पानी पीना बेहद पसंद करते हैं, चिलचिलाती धूप से आते ही फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने की आदत हम में से कई लोगों की होती है। इसे पीने से हमें तुरंत राहत जरूर मिलती है, लेकिन ठंडे पानी पीने से मिलने वाली यह राहत कुछ पल की होती है। साथियों, आपको कुछ देर राहत देने वाला यह पानी आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। बहुत कम लोग यह ही जानते होंगे कि बर्फ वाला या चिल्ड वाटर पानी पीने से सेहत को कई गंभीर नुकसान पहुँच सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्रिज में पानी आर्टिफिशियल तरीके से ठंडा होता है, जिससे शरीर के टेम्परेचर में अचानक बदलाव आता है। इससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ सकती हैं। इससे न सिर्फ आपका वजन बढ़ सकता है, बल्कि आपके हार्ट को भी नुकसान पहुंचता है। साथियों, ठंडा पानी आपके पाचन तंत्र को तेजी से प्रभावित करता है। नियमित रूप से ठंडा पानी पीने से खाना पचाना मुश्किल हो जाता है, और साथ ही पेट दर्द, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ड वाटर पीते हैं तो इससे ब्रेन फ्रिज की समस्या भी हो सकती है। दरअसल साथियों, ठंडा पानी रीढ़ की हड्डी की सेंसिटिव नसों को ठंडा करता है, जिससे दिमाग पर असर पड़ता है। इसकी वजह से सिर दर्द और साइनस की समस्या हो सकती है। साथ हमारे शरीर में वेगस नर्व होती हैं, जो गर्दन के जरिए हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो इसकी वजह से आपकी ये नसें तेज़ी से ठंडी होने लगती हैं और हार्ट रेट को और पल्स रेट को धीमा कर देती हैं, जिससे इमरजेंसी स्थिति पैदा हो सकती है। चिल्ड वाटर से गले में खराश और कंजेशन की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से खासकर खाना खाने के बाद एक्स्ट्रा बलगम बनता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाता है और सूजन संबंधी संक्रमण का कारण बनता है। इसलिए साथियों, चिल्ड पानी ना पिए। मिट्टी के बर्तन का पानी आयुर्वेद के अनुसार हमारी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए फ्रिज के पानी की अपेक्षा मिट्टी के बर्तनों के पानी का उपयोग करें। इससे आप अपनी हेल्थ के साथ साथ बिजली की खपत को भी कम कर सकते हैं। साथियों, बिजली की खपत को कैसे कम किया जा सकता है जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि हर महीने आने वाले भारी भरकम बिजली के बिल को कम कैसे कर सकते हैं। साथियों, अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो बिजली की खपत को बड़ी आसानी से कम कर पाएंगे और जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव करना होगा। इसके लिए आप नेचुरल लाइट का यूज़ करें, अपने घर की खिड़की और दरवाजों के पर्दे खोलें और सूरज की रोशनी को अंदर आने दें। जब भी हो सके आर्टिफिशियल लाइट पर निर्भर होने के बजाय यदि आप नेचुरल लाइट का उपयोग करेंगे तो आप बिजली

की खपत को कम कर सकते हैं। हल्के रंग के पर्दे खरीदें, उनसे कमरों में उजाला हो सकेगा और प्राइवेसी भी बनी रहेगी। साधारण बल्ब की जगह CFL और LED बल्ब का प्रयोग करने से काफ़ी ऊर्जा बचाई जा सकती है। साधारण बल्ब अपनी 98% कंज्यूम की गई ऊर्जा को गर्मी के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं, जबकि CFL और LED बल्ब कई ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं और कई गुना ज़्यादा समय तक चलते हैं। ज़रूरत ना होने पर स्विच ऑफ कर दें, और यह बिजली बचाने का सबसे आसान और सबसे आम तरीका है और यह वास्तव में काम करता है। इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि एक निश्चित समय पर आपके घर में कितनी बत्तियां हैं। इस बात के प्रति जागरूक रहें कि आपको एक समय पर कितनी बत्तियों की आवश्यकता है। जब आप एक कमरे से बाहर जाएं, तब हर बार बत्ती बुझाने की आदत बनाएं। किसी भी ऐसी डिवाइस को अनप्लग करें जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिन डिवाइस के प्लग सॉकेट में लगे होते हैं वे बंद होने के बावजूद भी बिजली का उपयोग करते रहते हैं। फ्रिज का दरवाज़ा बार बार ना खोलें। दरवाज़ा बार बार खोलने से फ्रिज के कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ती है। AC के टेम्परेचर को 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियत करें। इससे नीचे टेम्परेचर पर बिजली की खपत पर असर तेजी से पड़ता है। कूलर पंखे में इलेक्ट्रिक रेगुलेटर का इस्तेमाल करें और साथ ही ऑयलिंग, कंडेंसर, वायरिंग की सर्विसेज का ध्यान रखें। इस तरह साथियों, अपनी छोटी छोटी आदतों से आप बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे।

साथियों, नौ तपा में तापमान 45 डिग्री से 47 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। इसका असर हमारे साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी पड़ता है, वो भी ओवरहीट हो सकते हैं। इस दौरान मोबाइल, लैपटॉप, ईयरबड्स या पावर बैंक जल्दी गर्म होते हैं। इससे बैटरी डैमेज, लो परफॉर्मेंस या अचानक डिवाइस बंद होने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। साथियों, कभी आपने सोचा है कि आखिरकार फ़ोन में हीट बनती कैसे है? दरअसल साथियों, आपने एनर्जी का एक प्रिंसिपल पढ़ा या सुना होगा, E=mc². इसका मतलब होता है कि ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, सिर्फ बदलती रहती है। हमारा फ़ोन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब फ़ोन यूज़ होता है तो बैटरी में स्टोर एनर्जी हीट में बदलती रहती है और ये ज़्यादा से कम की ओर ट्रेवल करती है। नौतपा में साथियों, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे में फ़ोन गर्म होने पर यह हीट वातावरण में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, इसलिए फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है और ओवरहीटिंग से गैजेट्स को कई नुकसान होते हैं, जैसे बैटरी जल्दी ख़राब होती है, प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है, प्रोसेसर या मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है, फ़ोन या मोबाइल लैपटॉप बंद हो सकते हैं, बैटरी फूलने या और डिवाइस डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है, अचानक शटडाउन से डेटा लॉस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं साथियों, ओवरहीट से स्क्रीन पर भी असर पड़ता है, इसलिए साथियों गर्मियों में गैजेट्स को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं, जैसे फ़ोन को डायरेक्ट धूप के संपर्क में ना आने दें, बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज ना होने दें और फ़ोन ओवरनाइट चार्जिंग पर तो बिल्कुल भी ना लगाएं, हमेशा ओरिजिनल चार्जर का ही यूज़ करें, फ़ोन हीट होने पर उसका कवर हटा दें, लैपटॉप को बेड तकिए पर रखकर तो बिल्कुल ना चलाएं, अनयूज्ड ऐप्स को बंद कर दें और साथियों सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। साथियों गर्मियों में गैजेट्स को ओवरहीटिंग से बचाकर आप उनकी सेल्फ लाइफ को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं।

आशा करती हूँ साथियों कि आपको हमारा आज का यह युववाणी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य विषयों के साथ। तब तक सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आप युववाणी कार्यक्रम साथियों मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथियों अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अब अपनी दोस्त उमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे ग्वालियर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब सुनिए फिल्म संगीत। पहले सुनिए कुमार सानू की आवाज में इंदिवर का लिखा गीत। संगीतकार है MM करीम। फिल्म है क्रिमिनल।

लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में समीर का लिखा गीत। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। फिल्म का नाम सुहाग।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एजेंट विनोद का ये गीत, आवाज नंदिनी श्रीकर, मुअज्जम और रिजवान, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी और शबाब साबरी की है। गीत लिखा है नीलेश मिश्रा ने, संगीतकार है प्रीतम।

लीजिए अब सुनिए सपना अवस्थी और चेतन शशिताल की आवाज़ में समीर का लिखा गीत। संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय। फिल्म का नाम शूल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। कलाकार होंगे नीलम कुलकर्णी, कीर्ति श्रीवास्तव के गाए गीत और भजन आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत में। समय होगा 6:45। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम होगा 7:21 पर। इसमें आप सुनेंगे श्री अवधेश कुमार पटेल से ली गई भेंटवार्ता। विषय होगा धनिया की उन्नत खेती। रात 8 बजे सुर्खियों में 8:15 पर फिल्म संगीत। 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। इसमें सुनिएगा डॉक्टर प्रभात त्रे का गाया राग मधुवंती में ख्याल। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन हम पेश करेंगे रात 10:30 पर। श्रोता, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुनिए कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी प्रातःकालीन समारंभ होगी कल सुबह 5:55 पर। 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुबह 6:30 पर। 6:35 पर श्री रामचरित मानस का गायन होगा। 6:45 पर किसान भाइयों के लिए कृषि सामयिकी का प्रसारण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार सुबह 9 बजे। सुबह 10:10 पर विश्व दर्पण। वंदे मातरम गौरव गान की 1:30 10:05 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा सुनिएगा 10:20 पर। 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 5:58 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से न्यूज़ हेडलाइंस।

0: इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने और स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी तैयारियों की समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण से होगी। और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजे है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश

0: अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है, केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
0: जी।
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
0: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
1: जी,
0: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
0: जी।
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
0: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ, जरूर।
0: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं,
0: जी।
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
0: जी।
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
0: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
1: जी,
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी।
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
0: जी।
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से 2 दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
5: अरे वो देखो बंदर।
4: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे? देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक

0: ओ, ये तो रीछ की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
1: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
0: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: अरे, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
1: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
0: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
0: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीछ उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
0: ये रीछ तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
0: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
1: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
1: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
0: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: नहीं लगी।
5: अरे नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको।
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हा?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
8: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
9: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
8: आप तो काम करती है ना?
9: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
8: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा,
10: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
10: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरमा,
10: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
10: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
10: अच्छा, तो ये बात है बहनों।
11: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा।
10: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
12: बिल्कुल,
10: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
11: हाँ, हाँ, सब तैयार हैं।
12: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं कटने देंगे।
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
10: ये है जंगल के उपकार,
11: मिट्टी पानी और बयान,
10: मिट्टी पानी और बयान,
11: जिंदा रहने के आधार।
4: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।

0: होती तुम्हारी,
1: ये
0: क्या है?
2: अरे
0: क्या कर रहे हो?
2: मेरा मुंह के ताक रहे हो? जाओ शुरू,
0: अरे भाई कौन है? रुको इसे, हम चल जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली, शर्म आनी चाहिए तुझे।
2: आगे बढ़ो।
0: अरे कहाँ से?
2: दो मिनट की बात में बताओ, मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू,
0: चिपक जाएंगे,
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज,
4: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
5: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
2: ठीक है तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
6: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
6: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
6: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
7: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
8: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है, यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
6: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
9: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440055

1559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार है नीलम कुलकर्णी। आपको सुनवा रहे हैं इनके गाए बुंदेली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलकर्णी के गाया लोकगीत। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं कीर्ति श्रीवास्तव। लीजिए पहले आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में मीराबाई का ये भजन।

श्रोताओं, आप सुनिए कीर्ति राजपूत के स्वर में ये भजन। रचना चंद्रशेखर सेनगुप्ता की है।

कीर्ति श्रीवास्तव के स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित भवानी प्रसाद तिवारी का लिखा गीत।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है।

उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: suryaghar.gov.in
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के चौड़ीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में 5 से 12 जून तक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की और राज्यपाल वंगोभाई पटेल ने भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वी शताब्दी महोत्सव के तहत पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि शामिलाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दोनों देशों के विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण ATF की कीमतें मार्च में 60 रुपए से बढ़कर मई में 182 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। ये सहायता अगले 36 महीनों तक जारी रहेगी। इससे विमानन क्षेत्र के 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी ने बताया,
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने 2 लाख ट्रक और 16,000 बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक

0: वाहनों से बदलने की योजना को भी हरी झंडी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। 233 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी, यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ये मार्ग इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों के साथ साथ कई औद्योगिक और जनजातीय केन्द्रों को भी बेहतर संपर्क देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री ने इसे वोकल टू लोकल की दिशा में देश की वैश्विक छलांग बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और 40 से अधिक लोगों को बचाकर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण से होगी। इसके बाद 8 जून से स्वच्छता अभियान, 12 जून से 18 जून तक जन कल्याण शिविर और 19 से 20 जून को प्राकृतिक खेती पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये पूरा अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को संपन्न होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने, स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आज कहा कि इस दौर में हिंदी पत्रकारिता को वीडियो, पॉडकास्ट और मोबाइल मंचों के जरिए युवा पीढ़ी से जोड़ना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सचिव ने अंतिम मतदाता सूची समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर शिवपुरी जिले की मैहर शक्ति और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ज्योति जाटव ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर ज्योति ने स्वरोजगार की राह पकड़ी और आज वे आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
2: हमारे गांव में समूह चलाती हूँ, मेरे समूह हैं 11 समूह हैं, उनकी बैठक करती हूँ और उन मतलब जो भी बैंक सखी का काम करती हूँ और बुक कीपर का भी करती हूँ, तो उसमें मुझे 5,000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। और घर पे मेरी साड़ियों की दुकान भी है, तो साड़ियों की दुकान भी चलाती हूँ संध्या सवेरे के टाइम में। तो आज मेरी इनकम 1,44,000 से अधिक है। मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद बोलूँगा।
0: भोपाल की रविन्द्र भवन में कल शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देश भर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस के तहत सुपोषण दिवस और टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। देवास में आज यूसीसी के संबंध में

सुझाव और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। अनूपपुर जिले की छात्रा कुमारी आंचलपुरी ने जीडब्ल्यूई एडवांस्ड 2026 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए एसटी पीडब्ल्यूडी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। छिंदवाड़ा में अवैध खनन के मामले में उमरानाला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें पैदल न्यायालय पेश किया है। शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कटनी में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। खरगोन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जिले में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। नशे को कहे ना अभियान के अंतर्गत शाजापुर में आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कल 4 जून को होगी। शहडोल जिले में श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नागरिकों से श्रम प्रहरी बनकर श्रम विभाग को सहयोग देने की अपील की गई है। नीमच की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले 2 वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। आगर मालवा पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत सुनन बारे हमारे सबरे किसान भैया भौजियों खो जिज्जी बिन्ना हरों खो भावना बिन्ना की दो ही हाथ जोड़ के राम राम। तो भैया हरो अब जाना कहने कि इतने बड़े थैला में जी बिन्ना का भर के ले आई, काई की इत्तो वजनदार तो लग ही रहो आए दिख ही रहो आए। अरे हम बता तो रहे हैं ई थैला में मटका को ठंडो पानी की एक बोतल रखी है और आम के पना की बोतल है और संगे संगे एक डब्बा रखो है ओ में सोई रोटी और आम की चटनी रखी है। हम तो ऐसी अपनी चौपाल में लेके आए हैं कि हमारे सबरे भैया भौजी बिन्ना हरे सब हमारी टमाटर ए आम की चटनी और पना जरूर खाएं आनंद लें हैं। तो भैया देखो ऐसे हमारा जो थैला है ना इतो भारी है और देखो भैया गर्मी तो देख ही रहे हो इतनी तेज घाम है कि हाथ पैर ऐसे जल रहे हथे कि हम कहाँ बताएं। और देखो हम तो दोपहरिया में ही निकले रहे घर से चौपाल आवे खिलाने और आते ही संगे खूब हमने तो पानी पी लो और पना पी लो तो इतो अच्छो लग रहा है कि हम कहाँ बताएं। और भैया आज मालूम कहाँ भाव जहाँ अपनी चौपाल की तरफ

आ रहे थे ना, तो हमने देखो कि रम्मू भैया अपनी गाड़ी निगत निगत आ रही हती। तो हमने कही कि रम्मू भैया गाड़ी खराब हो गई है का जे घसीट के ले जा रहे हो? तो रम्मू भैया बोले कि कछु नहीं बिन्ना, पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो हम निगत निगत ले जा रहे हैं। तो हमने कही कि पेट्रोल पंप तो बड़ी दूर है तैसे, और ऊपर ऊपर से देखो इतनी तेज घाम लग रही है। तो हमने कही कि चलो हम सोई तुम्हारी गाड़ी पकड़ लेते, नहीं तो तुम तो निगत निगत थक जे हो। फिर बदखाओ करत करत पेट्रोल पंप पहुँच ही गए, और उतें देखो तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी भैया भौजियों की। तो हमने भैया से कही कि गाड़ी आड़ी छोड़ो, और गुस्सा तो आ ही रही थी इतनी घाम में खड़े थे काय की दोनों को है। तो हमने कही गाड़ी आड़ी छोड़ो, साइकिल चलाने चाहिए अब तो। तो भैया कहने लगे कि तुम तो भी कुछ सांची कह रही हो, हमाओ मोड़ा तो चौथी में हतो, तब से साइकिल चलावे को बहुत ही वो कुछ शौक रहो। फिर उन्हें अपने कक्का से जिद करके साइकिल खरीदवा ली, और जब साइकिल खरीदी ना तो इतो प्रसन्न थो कि हम कहाँ बताएं, और दुकान से साइकिल चला के घर तक आ गओ थो हमारे संगे, और स्कूल से ही जाते हैं साइकिल चला के। तो फिर हमारे जो हरी कक्का है ना, अभी कहन लगे बेसोई अपनी बात में लग गए, वो भी कहन लगे कि तुम आओ मोड़ा जग्गू ने तो कमाल कर दो, बढ़िया साइकिल चलात है, और अब तो जग्गू बड़ो सोई हो गया है। और रम्मू भैया ने बताया कि जग्गू तो अपनी साइकिल बढ़िया टिप टाप रखत है, और पहले छोटी साइकिल चलात हो, अब उन्हें बड़ी साइकिल ले ली, और सबरों काम साइकिल पर ही करन लगो। और बिन्ना तुम सांची कह रही हो, उनने कही कि गाड़ी आड़ी चलावो छोड़ो, और साइकिल तो चलाना ही चाहिए। तो हरी कक्का बोलन लगे, बिन्ना हम तो बचपन से ही साइकिल चलाता आ रहे हैं, और हमारी साइकिल के पीछे कैरियल सोई लगो रहत हो, तो काकी को सोई बिठा लेते थे और गांव में घुमा के लात थे। तो हमने कक्का से कही कि हम सोई अपने, हमें बचपन की याद आ गई, अब हमारे पिताजी मालूम का करत थे डंडा में हमारे छोटे भैया को बिठा लें, और पीछे हमें बिठा लेते कैरियल में, और घुमा भी ले जाते हैं। तो फिर आशा भौजी सुन के बेसोई आ गई अपनी ओ में, तो और भी कहन लगी कि, और बोली कि आज ही तो विश्व साइकिल दिवस है, और 3 जून को ही मनाओ जात है, और विश्व साइकिल दिवस परिवहन को एक सरल सस्तो और भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करवे के काजे मनाओ जात है। और भैया रो, साइकिल सबसे सस्तो वाहन है, इके एक नहीं मुतके लो फायदा सोई है, जैसे पेट्रोल की बचत, पर्यावरण को संतुलन बनो रहत है, और प्रदूषण नहीं होता है, और व्यवसाय के, और जो अपन एक्सरसाइज करा थे ना, व्यायाम करा थे कि स्वास्थ्य के लान, जो अपने डॉक्टर भैया ने बोले थे कि व्यायाम करो तो अपन स्वस्थ रहे हैं, तो वो को तो बहुत अच्छा जो साधन है साइकिल चलावे को। तो फिर हरी कक्का कहने लगे, साइकिल चलाओ स्वस्थ रहो और पर्यावरण बचाओ। और कहन लगे कि साइकिल हमाओ पुरानो साथी है, शरीर को स्वस्थ बनात है, और देखो भैया शरीर स्वस्थ रहे तो मन प्रसन्न रहे, और जब मन प्रसन्न रहे तो सकारात्मक ऊर्जा मिल है,

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब देखो भैया, हमारे रमण बिहारी लाल की सुंदरता ने तो हम सबके मन को आनंद से भर दो। और हमारे किसान भैया भौजी हरे ऐसे ही तो आनंद और प्रसन्नता के संग खेती किसानी करत हैं। और तो और अब तो जग्गू है ना, अपनी साइकिल में एक दिन हरी धनिया बांध के ले जा रहा हूँ। तो हमने कही कि इतनी अच्छी धनिया ताजी दिखा रही है जग्गू, तुम कहाँ से लाए हो? तो जग्गू ने कही, जिज्जी हम जो न बते हैं जे श्री अखिलेश पटेल भैया से सुनो।
4: किसान भाई बहनों, राम राम। धनिया हमारी एक नकदी फसल है और उसकी खेती में आपको लाभ अधिक मिलेगा, तो क्यों ना धनिया की बात की जाए श्री अवधेश कुमार पटेल साहब के साथ, जो कि वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी से। अवधेश जी, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।
4: कैसी जलवायु होनी चाहिए धनिया की बुआई के लिए?
5: जो धनिया की जो फसल है सर, इसके लिए जलवायु है उसके लिए ठंडी जलवायु और जो शुष्क जलवायु हो, इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं, बहुत उपयुक्त होती है, जिसका तापमान जो है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो, इसमें धनिया की फसल बहुत अच्छे से होती है। अगर गर्मी अधिक होती है तो जब तापमान हम देखते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है, तो उसमें क्या फूल जल्दी आ जाते हैं, जिससे उत्पादन हमारा कम हो जाता है। और इसमें अगर जैसे ठंड की सीजन हम लोग बात करते हैं, तापमान बिल्कुल नीचे चला जाता है, तो उस समय पाला लगने की भी संभावना होती है।
4: जी, इस समय बुआई कब करें?
5: जी, जो जून के महीने में है, इसमें जब हमारा पहला पानी गिर जाता है,
4: हाँ।
5: और हमको और रहते कि मानसून हमारा आने वाला, उस समय हम इसकी बुआई कर सकते हैं।
4: और हमारे क्षेत्र की, हमारे खेत की मिट्टी कैसी हो?
5: जो सबसे उपयुक्त मिट्टी हो, दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है, जिसमें जल निकास की सुविधा अच्छी हो, पानी ज़्यादा ना भरता हो। उस जमीन का जो है, हम लोग मिट्टी परीक्षण करवाने के बाद उसका जो pH मान है वो 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए।
4: जी जी, अब बात करें हमारे किसान बहन भाइयों के लिए, हमारे क्षेत्र में कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं जो उनको लाभ देंगी?
5: जी, जो हमारे यहाँ पे जो धनिया है वो दो प्रकार की लगाई जाती है, एक तो पत्तों के लिए और एक दाने के लिए।
4: जी,
5: जो पत्तों के लिए लगाई जाती है उसमें जैसे कई किस्में आती है, जैसे हमारी पंत हरितमा हो गई है, हिसार सुगंध हो गई है, जो 35 से 40 दिन में इसकी पहली कटाई हम लोग कर सकते हैं, और हरी पत्तों के रूप में इसकी 80 से 100 क्विंटल तक हम लोग उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाई हमारे दाने के लिए लगाना चाहें तो उसमें कई इसकी किस्में आती हैं, जैसे अजमेर धनिया वन, अजमेर धनिया टू, पूसा सिलेक्शन वन, गुजरात कोरिएंडर टू, और एक राजेंद्र स्वाति किस्म है जो 110 से 120 दिनों पक्कर के तैयार होती है, और उससे 20 से 25 क्विंटल तक हम लोग दाने का उत्पादन ले सकते हैं।
4: जी जी, अवधेश जी, धनिया क्या खेत की तैयारी मांगती है?
5: बिल्कुल, इसके लिए किसान भाइयों के लिए ध्यान देने की जरूरत है कि जो एक पहले हम लोग गहरी जुताई करते हैं, अगर मिट्टी में पत्थर कंकड़ नहीं है तो, उसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से और 2-3 बार उससे हैरो से हम लोग जुताई करते हैं, जिससे मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाए। और एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखें, अंतिम जुताई के समय हम लोग जो हमारी गोबर की खाद अच्छी पकी हुई, उसको 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिला दें और खेत बिल्कुल भुरभुरा बना दें।
4: जी जी, बीज कितना लगेगा और बीज उपचार कैसे करना पड़ेगा?
5: हमारे यहाँ पर जो धनिया की जो बुआई करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। अगर हम पत्तों के लिए धनिया लगा रहे हैं तो उसके लिए बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगी। लेकिन अगर हम दाने के लिए लगा रहे हैं, हमको जो मसाले के लिए धनिया चाहिए होती है, उसके लिए 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। बीज उपचार करना हम किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाद में रोग ज़्यादा लगते हैं, जैसे इसमें एक उकठा रोग लगता है, तो उसके नियंत्रण के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा जो हमारे ब्रेडी कल्चर आता है, जो जैविक है, उसको 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बीज की बुआई करनी चाहिए।
4: जी जी जी, हमें बुआई करनी है तो क्या उसका भी कोई तरीका होता है?
5: जी बिल्कुल,
4: करना है
5: बिल्कुल। हम किसान भाइयों के लिए सलाह देते हैं कि जो किसान भाई जो बुआई करते हैं तो अधिकतर हम लोग

0: छटकवा बो देते हैं, तो
1: जी
0: छटकवा ना बो करके उसकी लाइन से बुआई करें। तो लाइन से बुआई अगर हम लाइन से लाइन की दूरी रखें तो 30 सेंटीमीटर,
1: जी
0: पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें, और हो सके तो हम लोग सीड ड्रिल का उपयोग करें जिससे बुआई लाइन में होगी। इसके कई फायदे होते हैं, एक तो लाइन से बुआई करने हमारे को हमारी जो फसल रहेगी
1: जी
0: उसको प्रकाश, पानी, हवा बिल्कुल बराबर मिलता है,
1: बिल्कुल
0: खरपतवार नियंत्रण में हमको आसानी होती है,
1: जी
0: और सूर्य का प्रकाश बराबर मिलने से हमारी फसल अच्छी होती है।
1: जी जी
0: छटकवा करने से हमारे जो पौधों की बढ़वार अच्छे से नहीं हो पाती है, और जैसे हमको कोई पौध संरक्षण दवा डालनी है तो चलने में फसल भी हमारी खराब होती है, और पर्याप्त तो उसको हवा पानी और जो सूर्य की रोशनी है वो नहीं मिल पाती, जिससे
1: जी
0: हमारा उत्पादन कम हो जाता है और निंदाई गुड़ाई में भी हमको परेशानी होती है।
1: जी अवधेश जी, वैसे तो ये हम जून में क्योंकि इसको बुआई कर रहे हैं तो वर्षा का पानी तो मिल जाएगा, फिर भी यदि मान लीजिए पानी प्राप्त नहीं होता है तो सिंचाई की क्या व्यवस्था करें हम?
0: सिंचाई के लिए धनिया के लिए अगर जैसे अगर पानी नहीं गिरता है या पानी की हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो जैसे पहली सिंचाई जो है बुआई के तुरंत बाद करते हैं धनिया में, और दूसरी सिंचाई 8 से 10 दिन बाद हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें जिससे उसमें जमीन में नमी बनी रहे और पौधों की बढ़वार अच्छी हो। इसमें जो सिंचाई का समय, एक तो सबसे पहले अंकुरण के समय पर जो इसकी जो क्रिटिकल स्टेज हम लोग बोलते हैं क्रांतिक अवस्था बोलते हैं, अंकुरण के समय, फूल आते समय और दाना बनते समय, इसमें सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर हो सके तो हमको ड्रिप की अगर सुविधा हमारे पास तो ड्रिप से भी हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, जिसमें हमारी 40 से 50% पानी की बचत होगी और 20 से 25% ज़्यादा उत्पादन हम लोग ले सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब ड्रिप सिंचाई से उत्पादन भी
0: बिल्कुल उत्पादन भी बढ़ेगा क्योंकि सीधे जड़ क्षेत्र में पानी जाएगा, जितनी हमारी फसल को आवश्यकता होगी उतना उसको पानी मिलेगा और हमारा पानी भी बर्बाद नहीं होगा।
1: अब बात करें यदि पोषण की, धनिया को कितना पोषण लगता है खाद और उर्वरक के रूप में?
0: अगर हम प्रति हेक्टेयर धनिया की फसल की बात करें तो इसको 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। लेकिन इसको हम लोग कैसे दें, किसान भाई जानना चाहेंगे, जो बेसल डोज हम लोग बोलते हैं आधार बेस जो हम बुआई करते हैं उस समय हम लोग फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को दे दें, और जो हम नाइट्रोजन दे रहे हैं उसकी सिर्फ 50% मात्रा दें। जैसे हमको 60 किलोग्राम देना है तो हम 30 किलोग्राम ही उसके समय दें। उसके बाद हम लोग जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो 50% फिर दे दें, और फिर जो हमारी फसल जो 45 से 50 दिन की हो जाए तो बाकी जो बचा हुआ नाइट्रोजन है वो उसको हम लोग दे सकते हैं।
1: जी जी जी, हमारे कुछ किसान बहन भाई जैविक खेती की ओर जा रहे हैं
0: जी,
1: तो धनिया में भी वो चाहेंगे कि हम रासायनिक उर्वरकों की जगह जो जैविक खाद है उसको प्रयोग करें।
0: बिल्कुल, जैविक के रूप में जैसे अगर किसान भाई हमारे बर्मी कम्पोस्ट बनाते हों तो 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर बर्मी कम्पोस्ट डाल सकते हैं, नीम की खली डाल सकते हैं कीटों के नियंत्रण के लिए, और आजकल जो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जो हर जिले में लागू है उसमें हम लोग जैसे बीज उपचार के लिए बीजामृत और पोषण के लिए जीवामृत और कीटों के नियंत्रण के लिए हम लोग ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, नीमास्त्र इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: क्या इसमें भी खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है?
0: बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है, अगर खरपतवार ज़्यादा होते तो हमारा उत्पादन 30 से 40% तक कम हो जाता है। तो इसके खरपतवारों को अगर हम लोग जैविक रूप से, प्राकृतिक रूप से नियंत्रण करना चाहते हैं, अगर लाइन से बुआई करेंगे तो जो बीच में जो जगह है उसमें हम लोग मल्चिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग पलवार बोलते हैं, जैसे पुआल होता है, मक्का के डंठल होते हैं, ज्वार के डंठल होते हैं, इसको बिछा दें तो उससे मल्चिंग करने से क्या होता है, एक तो खरपतवार नहीं उगेंगे, दूसरा हमारा नमी का संरक्षण रहेगा और हमको बार बार सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। पहली निराई जो है हमको 20 से 25 दिन में आवश्यकता होती है, जिससे हम लोग हाथ से निराई गुड़ाई कर दें, और दूसरी निराई अगर हमको लगता है कि और आवश्यकता तो लगभग 40 से 45 दिन में दूसरी निराई कर दें, इसके बाद हमारी फसल बड़ी हो जाती है, फिर निराई की आवश्यकता नहीं होती है।
1: शुरुआत में वैसे आपने बीजोपचार के बारे में बताया था कि उसके बाद कीट और रोग से बचत हो जाएगी, मान लीजिए उसके बाद भी कीट रोग आते हैं तो कौन कौन से कीट और रोग हैं और उनका प्रबंधन हम कैसे करें?
0: बिल्कुल, मुख्य रूप से इसमें जो कीट आता है वो आता है माहू कीट जो पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां उसकी पीली पड़ जाती हैं, और अधिकतर ये माहू कीट आता है जब हम देखते हैं कि उसमें फूल आने वाले होते हैं या फिर उसमें हल्के दाने बनने लगते हैं। इसमें कोई भी रासायनिक कीटनाशक हमको इस समय नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय हमारी मधुमक्खियां आती हैं जो परागण करती हैं, अगर कोई हम उस कीटनाशक को अगर हम डाल देते हैं तो हमारी मधुमक्खियां मर जाएंगी और परागण नहीं होगा। तो इस समय हम लोग कोई भी जैविक कीटनाशक डालें, जो हमने अभी आपको बताया ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अग्नियास्त्र या फिर जो नीम तेल हमारे बाजार में आता है वो 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके उसका स्प्रे हम लोग कर सकते हैं।
1: जी, और मान लीजिए ये समय निकल जाता है मधुमक्खी वाला जो आपने बताया है,
0: बिल्कुल
1: और अत्यधिक प्रकोप होता है कीटों का,
0: जी
1: तो कोई रासायनिक इसमें दवा है?
0: बिल्कुल, इसके लिए अगर हम लोग

0: कि हमारा जैविक रूप से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है
1: जी
0: और प्रकोप ज़्यादा है, तो इसमें इमीडाक्लोपिड आती है जो
1: जी
0: 17.8 SL की आती है, वो 0.5 ml
1: जी
0: प्रति लीटर पानी के हिसाब में मिलाकर उसका स्प्रे सुबह या शाम के समय कर सकते हैं।
1: जी
0: इसमें एक कीट दूसरा आता है, व्हाइट फ्लाई आता है जिसको हम लोग सफ़ेद

0: बंगाल जो तने में गांठें आ जाती हैं,
1: हाँ,
0: एक लगता है ब्लाइट लगता है जिसमें पत्तियां मुरझा जाती हैं या पौधा पूरा मुरझा जाता है। तो इसके लिए एक हेक्जाकोनाजॉल करके एक दवाई आती है
1: जी
0: जो 30 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे हम लोग कर सकते हैं, जिससे इस रोग का नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं।
1: जी
0: बस हमको थोड़ी ध्यान देना है कि सुबह या शाम के समय स्प्रे करें।
1: हरी धनिया की कटाई कब करें और
0: जी
1: दाने के लिए कटाई
0: जी
1: कब करें?
0: अगर हमने हरी धनिया के लिए लगाया, किस्मों के आधार पर 30 से 40 दिन में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं।
1: जी
0: और जो हमारी किस्में वो कई मल्टी कट होती हैं जिसको हम लोग कई बार काट सकते हैं, जैसे 30 से 40 दिन में पहली कटाई,
1: जी
0: फिर 50 से 60 दिन में दूसरी कटाई, फिर 70 से 75 दिन में तीसरी कटाई हम लोग कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन जो हमारी दाने के लिए जो हम लोग लगाते हैं वो किस्मों के हिसाब से उनका अलग अलग जो है अंतरण होता है। एक हम लोग औसत माने तो 90 से 100 दिन के बीच में
1: जी
0: हमारी वो दाने के लिए तैयार हो जाती हैं।
1: जी
0: इसके लिए जो है अगर हम लोग देखते हैं कि उसके जो पत्ते हैं
1: हाँ
0: वो पीले पड़ जाते हैं,
1: जी
0: और एक तो उम्र का, दूसरे पत्ते पीले पड़ जाएंगे, दाना बिल्कुल हल्का हरा जब हो उस समय हम लोग इसकी कटाई करें, और कटाई हो सके तो हम लोग सुबह के समय करें, उस समय उसमें खुशबू ज़्यादा रहती है।
1: जी तो कितनी उपज मिल जाएगी हरे धनिया की भी और दाने की भी?
0: जो हरे धनिया की उपज वो 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है, और अगर हम दाने के लिए लगा रहे हैं तो हमारी 12 से 18 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं।
1: तो अवधेश जी, आपने जो मार्गदर्शन दिया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।

और अब तो हरी कक्का बता रहे थे कि जग्गू अब तो फल सब्जी के ठेला लगान लगू है और सरकार की तरफ से ऋण सोई मिलन लगो खो। और अब तो जग्गू बिल्कुल आत्मनिर्भर बन गयो है। और जग्गू को देख के गांव के भैया भौजी हरे जिज्जी बिन्ना हरे सोई जा योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लाभ लेन लगी हैं। और अब तो जौन भैया भौजी शहर जात थे ना पैसा कमावे अपने परिवार चलावे भी सब भैया भौजी हैं अब अपने गांव में ही अपने छोटो छोटो व्यवसाय कर रहे हैं और आत्मनिर्भर सोई बन रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति सोई अच्छी हो रही है। तो भैया खेती किसानी से आमदनी बढ़ावे के कई रास्ता हैं और हमारे ऐसे भैया भौजी हैं जो छोटे छोटे धंधा कर रहे हैं ना अपनो जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे ही भैया भौजियों के काज है अपनी सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चला रही है। और जा योजना जैसे सड़क किनारे ठेला लगावे वाले भैया भौजी हैं फल सब्जी बेचवे वाले भैया भौजी हरें और छोटे व्यापारी भैया भौजी हरें उनके लाने जा योजना चलाई जा रही है। और इसे का है आसानी से ऋण मिल सकत है और जबई से अपनो भैया भौजी अपनो अच्छो व्यवसाय कर सकत है और टाइम पे ऋण चुका सकत हैं। और जा योजना छोटे व्यापारी भैया हरों के लाने हैं और वे आत्मनिर्भर बने एक ही लाने जा योजनाएं बिल्कुल चलाई जा रही हैं और ऋण की सुविधा दे के उनकी आजीविका को पुनर्जीवित करने में मददगार सुई साबित हो रही हैं। और देखो भैया हरों सरकार की योजनाएं किसान भैया हरों और जौन ग्रामीण भैया भौजी हैं ना उनके विकास के लाने लगातार काम सोई कर रही है। और हमारे भैया हरों के विकास में हमारी देखो जीवनदायिनी नर्मदा मैया को तो बड़ो योगदान है और नर्मदा जी के आशीर्वाद से और उनके निर्मल जल से हमारे खेत खलिहान सोई हरे भरे रहते हैं।

0: और भैया देखो, गर्मी तो ऐसी पड़ रही है कि जब बाहर निकलो तो लू लगवे को डर तो रहता ही है। तो ई के बचाव के लाने अपन को तो बहुत सतर्क रहे, वो बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि अब जब अपन जर्रा से अपन बाहर निकले इतनी घाम में, और ना पानी पियो ना गमछा लपेटो, तो अपन को तो भोग नहीं पड़े। फिर अपन को ऐसे बचाव के लाने खूब तो पानी पीने चाहिए, फिर अच्छी प्याज खाने चाहिए, पना पीने चाहिए, आम की चटनी खाने चाहिए। अब जी भैया भौजी हरें तो करते ही हुई हैं, लेकिन कछु भैया भौजी हैं तो अपनी सेहत को ध्यान ही नहीं रखता हैं। बेकहत हैं कि हम तो वैसे ही स्वस्थ हैं। मनु ऐसू नहीं है, अपन को ये तनक तनक सी जोन रहती है ना, तो अब सावधानी है तो अपन को तो बरतना ही चाहिए। और जब ही तो अपन अपन स्वस्थ रहे हैं तो अपनो परिवार स्वस्थ रहे हैं। और अपने परिवार में देखो भैया रो, तन्नक तन्नक से मोड़ा मोड़ियों के संग है अपने बड़े बुजुर्ग सोई रहे थे, और इनके संगे अपन को सब अच्छे से स्वस्थ रहे हैं, एक दूसरे को अपन ध्यान रख हैं, तभी तो अपन अच्छे से काम कर पाए।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो भैया देखो, हम यही से कह रहे हैं कि अबे 2 दिन पहले हम ऐसे ही घाम में निकल गए, अब ऐसी हमें लू लग गई कि बिल्कुल 2 दिन से हम इतने परेशान कि कहूँ सिर पैरा रहो है, कहूँ बिल्कुल शरीर है सो दुख रहो है पूरा शरीर। तो ई के बचाव के लाने अपन को सतर्कता तो बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि देखो, अपन जैसो करें ना, अपने मोड़ा मोड़ियाँ भी वैसे ही कर हैं, तो अपन को कहूँ एक तो अपन को दिन में ऐसी घाम में निकलने नहीं है ऐसी धूप में, और यदि बहुत ही ज़रूरी है तो अपन को सतर्कता रखवो ही बहुत ज़रूरी है। खूब पानी पी के निकलो, गमछा अच्छे से ओढ़ आढ़ के निकलो है, और पानी की बाटल बिल्कुल साथ में रखो। काहे कि अपन इतने इतने को गंदो पानी पी लेते हैं तो अपने ही को भोगने पड़ा थे। फिर तनक तनक सी जो सावधानियां अपन रख है ना, तो अपन भी स्वस्थ रहे और अपनो परिवार भी स्वस्थ रहे। और भैया हरो देखो, अपन तो हैं अपन खेती किसानी वाले भैया हरे हैं ना, तो हमारे जो भैया भौजी हरे बिन्ना हरे हैं ना, भी क्या करती हैं पूरे परिवार को तो खूब ही ध्यान रखती हैं, मतलब मनु, लेकिन अपनो ध्यान नहीं रखती हैं कछु भैया बिन्ना हरे भौजी हरे। काहे कि उन्हें भैया लोग हरों को कक्का काकी हरों को अच्छो गरम गरम भोजन खिलावे में तो अच्छो लगत है, मनो अपनी अपनी जब बारी आत है ना तो भी कहती अरे हम तो ऐसे ही खा ले हैं, फिर बासो तेरासो खा लेती हैं। और फिर जो ही बासो तेरासो उन्हें फिर बाद में समझ में आते है कि कितनी परेशानी को सामना करने पड़ा थे, कहूँ पेट खराब हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो अपन को ये ही तो जानकारी है, मतलब इतने उतने से लेने चाहिए और अपनो स्वास्थ्य अच्छे रखने चाहिए। और जब अपन देखो, अपन जो मटका में पानी धरत है तो अपन कहते हैं ना कि अच्छे साफ स्वच्छ हाथ से पानी निकालो है ना, तभी तो अपन जो पी है तो अपन को मतलब अपनी स्वास्थ्य अच्छे रहे उसे। तो अपनी जो मोड़ा मोड़िया हैं अपन को देख के ही तो भी सीखत हैं। ऐसे भैया हरों, जो लंबी डंडी वाले जो डंका रहे थे ना, वो को मटका में रखो चाहिए और वही से पानी निकालो और वही से पियो गिलास में लेके है ना। और जो अपने भैया भौजी अपने घर में आते हैं उन्हें पानी जरूर पिलाओ, कछु दियो चाहे ना दियो, लेकिन पानी तो अपन को जरूर ही पिलाने चाहिए। काहे कि पानी से ही अपनो स्वास्थ्य खराब होते हैं, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और भैया हरो देखो, अब जावे की बिरिया तो हो ही रही है, तो हमारे सबरे किसान भैया भौजियों बिन्ना हरों को भावना बिन्ना की राम राम, जय जवान जय किसान।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कार्यक्रम सुर्खियों में हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले कर रहे हैं।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल क्लास लाइव्स थ्रू रिफॉर्म एंड वेलफेयर। पार्टिसिपेंट्स आर अशोक टंडन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड शरद कोहली, इकोनॉमिक एनालिस्ट। मॉडरेटर इज अनुभा रोहतगी।
3: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
4: Thank you very much.
5: Thank you.
3: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
4: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
3: Absolutely. Mr. Tandon.
5: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में
3: जी,
5: उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूँ, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें।

0: सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
1: जैसे भी शरद जी ने
0: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है। और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल exiting multi-dimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement would do you think that is of the government, of the Modi government, Sharadji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye, hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. You know, we've changed the definition, because ab poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupaye roz ka. आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीन, यू नो, सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो, जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना, या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफ स्टाइल विच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स, सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी, बिकॉज दोज पीपल financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities.
2: Absolutely.
1: Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time, and today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana. You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So, biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle-down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया, और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या, जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेट वर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकॉनमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकॉनमी डबल हुई है, तो इकॉनमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
0: मैं आपकी बात

0: से पहले
1: जी
0: स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है, और जैसे अभी बात हो रही थी अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं
1: शरद जी। मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की पर मैं वापस आऊंगी, जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं
1: बिल्कुल,
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, and I think a lot of people said that startup India, you know, people have been doing businesses here for times immemorial. So what is new? Yes, there was something new because startup focused on innovation, startup focused on new ideas, and that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. And a lot of youngsters, and today just on startup India there are 2 lakh plus registered startups, and you know you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
1: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel.
1: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers
1: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
1: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You know, you'll be surprised the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
1: they
2: a very, very active GDP.
1: In
2: fact,
1: actually.
2: We did an analysis recently which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: right.
2: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar. You also create rozgar for other people.

0: many countries have borrowed this fintech innovation from us, and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch
2: kya? Main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है, दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पर हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ कर
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज, आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन. एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग. ए प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते, पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी, हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है.
1: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम किया है, हमें
0: उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ होना है.
1: We have seen in the last 12 years, since 2014, when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
0: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak.
1: बिल्कुल.
0: वेल अ प्लेन जर्नी यूज टू बी अ ड्रीम फॉर पीपल के हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा. आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा. अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है. छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे. आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी. जल्दी पहुंचना है. आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल. द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री.
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है. वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं 225 तक. जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान पर, अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं. ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है. अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं. अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है. इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है.
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
0: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे. देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है. क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं. क्योंकि जब लोग देखते हैं वो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं. तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर.
1: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन. Women, you know, are the backbone of any middle-class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle-class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं. अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी में, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो self help groups हैं, वहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होके कुछ business शुरू कर रही हैं। Ministry of Cooperative बन गई है, जहाँ से बहुत सारी cooperative societies के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका result कहाँ दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी results आते हैं किसी भी examination के, वहाँ महिला candidate सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला education को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाए तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा अनुभव, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें, तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली 3 हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज If you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything. I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म इम्तिहान से। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर को।

0: रहते फिल्म संगीत मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
3: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
1: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधान सौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधान सौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1 करोड़ 25 लाख घरों में से 98 लाख से

0: अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मॉनसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
3: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए।
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी है कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से एक किसान कॉल सेंटर 24/7 काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम प्रयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसीएआर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मॉनसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है, इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
3: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का, उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके वजह से कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृत्रिम क्रियाएं आगे जो पूरे चार मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में दो बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब कुछ क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग उस ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात या मध्य भारत की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है और वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
2: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है?
3: अगर हम एल नीनो को

कि सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, या इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर उसको और बृहद रूप में समझे तो ये

0: यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अलनीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं लानीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत के में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एलनीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एलनीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एलिनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब लानिना कंडीशंस होती हैं तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एलिनो कंडीशंस यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एलिनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है। बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का जो सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एलिनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है। यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए ये भी एक कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमारी भी फैलाते हैं, कीड़े भी प्रकोप भी लाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का भी प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं उससे नुकसान भी होता है खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का

0: प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उनका विशेष ध्यान रखना है। खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराए नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: टपाल
0: साथ
1: जी,
0: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर रहता वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो लेते ह्यूमिडिटी है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमोसफेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती हैं, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका, ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है, और इसका असर ट्रैक्टर, FMCG और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है?
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है, क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों में वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सारी संसाधन होने चाहिए। तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई हैं जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ आप ही आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है, और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री, कृषि अर्थशास्त्री हैं, उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना, मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है,

0: तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग-अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले एक दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में की अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, कि वातावरण में एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान
1: जी
2: दिया जा रहा है।
1: जी
2: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और एआई एमएल को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर प्रभा अत्रे का गाया राग मधुवंती में ख्याल। आपके साथ तबला संगत की है मुकुंद राजदेव ने, हारमोनियम पर अनंत राणे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रभात त्रे का गाया राग मधुवंती में ख्याल। आपके साथ तबला संगत की थी मुकुंद राजदेव ने, हारमोनियम पर अनंत राय ने, तानपुरा संगत की थी रागिनी और छाया साखरे ने। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:00

0: पर 30 मिनट हुए हैं। पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मन भावन। सभी श्रोताओं स्वीकार करें अपने अजीज दिनेश का प्यार भरा नमस्कार। हम हाजिर हैं आपके खतों को लेकर आपके गीतों के साथ। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत से। फिल्म का नाम है पूजा के फूल। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन। सुनना चाहते हैं नेपाल पैलेस से सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया। नारायणपुर कोटवा बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, प्रतीक रोशनी, प्रांजल राय। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता, प्रिंस एकांश। नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित, श्वेता और ध्वनि गवाड़कर।
1: एक पंजाबी फौजी म्यूजिक।

अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म नीला आकाश का ये गीत। गीतकार राजा मेहदी अली खां, संगीतकार मदन मोहन। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल

फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन तानिया, ग्राम पंचायत बठेना से बल करण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी, सारा गांव चटौदा से सुजान वर्मा, सुभद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, शारदा सिंह, सपना सिंह, सत्यम सिंह, शिवम सिंह ठाकुर, सृष्टि मेघा राखी, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील, फिरोज आलम और नाज प्रवीण।

श्रोताओं, अब पेश खिदमत है नूरजहाँ की आवाज़ में फिल्म अनमोल घड़ी का ये नगमा। बोल तनवीर नकवी के हैं, धुन बनाई है नौशाद ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब।

नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर और उनके परिवार के सदस्य, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, बाजारपारा मेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची ने

अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म है नौनिहाल, बोल कैफी आज़मी के हैं, धुन बनाई है मदन मोहन ने। अनुरोध आप सबका, गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, यंग रेडियो लिसनर्स खोआ मंडी जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया, बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम शुभांग, सृष्टि गदरे, खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य।

लीजिए अब सुनिए फिल्म दुपट्टा का ये नगमा। नूरजहाँ की आवाज़ में मुशीर काजमी के बोल हैं, संगीत फिरोज़ काजमी का। इस गीत को पसंद किया है पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल कमा खत्री, मोहम्मद अल तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ, चरडोगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, परनाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप माधुरी, पिंटू जयश्री खंडाले, कुंदनगर खरगोन से ध्रुवास सोनावड़े, सुनीता सोनावड़े, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनावड़े।

लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया गीत। इसे लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने, फिल्म है मधुमति। अनुरोध करने वाले श्रोता है संभाजी नगर से, हमारे श्रोता है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि, शीतल राजेश, देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, पंजाब रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक, चांदनी चौक गंडई पडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम पूरन, रोहित छोटू डुंडुन, पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वाडोदे, जरुड़ वरुड़ से बाबा साहब वाडोदे, चंद्र प्रभा वाडोदे, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजपुर से घिस्सू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता स्मिता, सौरभ कुणाल, तीन महुआ खापरखेड़ा रायसेन से तुलसीराम साहू, हेमंत कुमार साहू, मुकेश साहू, आरती ममता और गोमती साहू।

फिल्म मधुमति के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मनभावन समाप्त होता है। अपने अजीज दिनेश को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक

0: इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सर माइक वन पीसी बूथ कंप्यूटर टू ऑलरेडी टेस्ट में दिया हुआ था, अब कंप्यूटर लेफ्ट देते हैं डीजे प्रो।

कंसोल टाइम 5:22, 5:06:08 है। स्टूडियो टाइम गड़बड़ है, इसको थोड़ा 30 सेकंड का फ़र्क आ रहा है। कंसोल टाइम ठीक है, ठीक है सर। टेस्ट ओवर।